नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। मीडियम व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जून 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.

0: मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मेरा वतन मेरी शान है, इस मिट्टी की खुशबू में वीरों का बलिदान बसता है। ये भारत भूमि केवल देश नहीं, अभी तो हम करोड़ों भारतीयों के दिलों की पहचान है। आइए हम सब मिलकर प्रेम, एकता और सम्मान का दीप जलाएं।

जय हो श्री सांवरिया सेठ की, जहां हर भक्त अपनी झोली भरकर लौटता है। सांवरिया सेठ के दरबार में आस्था, प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य स्वीकार होती है। भक्तों की सेठ सांवरिया सरकार की जय की गूंज पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाती है। आइए इस भक्ति रचना के माध्यम से हम भी अपने जीवन में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का दीप जलाएं।

श्री शिरडी वाले साई बाबा मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश है। साई बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। उन्होंने मानव समाज को जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्चाई, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई आसान हो जाती है।

गुरु नानक देव जी ने मानवता को प्रेम, समानता और सत्य का संदेश दिया। गुरु नानक जी ने मेहनत की कमाई, ईमानदारी और जरूरतमंदों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया तथा भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया। उनका संदेश आज भी हमें प्रेम, करुणा और मानव सेवा के साथ जीने की प्रेरणा देता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने चिंतन।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है विचारों की श्रृंखला में आज का चिंतन। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दिशा तय करता है। जीवन की राह में हम सभी अपने अपने अनुभवों, परिस्थितियों और भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, किंतु इन सबके बीच एक ऐसा तत्व है जो हमारे हर निर्णय और हर कदम को प्रभावित करता है, वो है हमारा दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण ये निर्धारित करता है कि हम किसी परिस्थिति को अवसर के रूप में देखते हैं या बाधा के रूप में। वास्तव में जीवन की दिशा बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर की सोच से अधिक निर्धारित होती है। मनुष्य का दृष्टिकोण उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें आशा की किरण दिखाई देती है। वहीं नकारात्मकता या नकारात्मक सोच हमें छोटी छोटी चुनौतियों को भी असंभव बना देती है। एक ही स्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक उसे सीखने का अवसर मानता है, जबकि दूसरा उसे अपनी असफलता का कारण बना लेता है। यही अंतर उनके दृष्टिकोण का होता है, जो अंततः उनकी दिशा तय करता है। इतिहास और वर्तमान दोनों ही ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं, जहां केवल दृष्टिकोण के परिवर्तन ने जीवन की धारा बदल दी। जब व्यक्ति समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वो समाधान खोजने लगता है, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। उसके विपरीत यदि हम समस्याओं से डरकर पीछे हटते हैं, तो हम स्वयं ही अपनी प्रगति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। दृष्टिकोण केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। यदि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति, समझ और सम्मान का दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत और मधुर बनते हैं। वहीं संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रह हमारे रिश्तों में दूरी और कटुता ला सकते हैं। इस प्रकार

0: हमारा दृष्टिकोण न केवल हमारी दिशा बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी आकार देता है। आज के इस तेजी से बदलते युग में, जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है, एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये हमें न केवल मानसिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा को भी सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को समय समय पर परखें और उसमें आवश्यक सुधार करें। आत्मचिंतन, अच्छे विचारों का अध्ययन और सकारात्मक संगति हमें बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करते हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हम अपने जीवन को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही कारण है कि सफल व्यक्ति वही होता है जो हर स्थिति में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस रखता है। उसका यही दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दिशा का निर्धारण करता है। यदि हम जीवन को आशा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ देखते हैं, तो हमारी राह स्वतः ही प्रकाशमय हो जाती है। आइए हम सभी अपने दृष्टिकोण को सशक्त और सकारात्मक बनाएं, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा दे सकें। इसी संदेश के साथ नमस्कार।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरी खाद के उपयोग से फसलों की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी।
2: सगला किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा हरी खाद का उपयोग से फसल की उत्पादकता किना तरीका से बढ़ाएं। अपन ये बात बहुत अच्छी तरीका से जाना कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता पे निर्भर रहे। जीवाणु को भोज्य पदार्थ जी मिले है, वह है कार्बनिक पदार्थ। तो इको अर्थ यह है कि हमारे यदि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है तो उन भोजन देनु आवश्यक है और भोजन है कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने का स्वरूप दलहनी पौधा खेत में उगई के उन्हें खेत में पीछा मिलानु इकासी कई हो कि पौधा उनके हरी खाद मिली जाए। इकालिए हमारा किसान भाई बहन हरी खाद उगाए, उसके बाद में खेत में जोती के पूरा खेत में मिलाई दे और मिट्टी में मिलाई दे। हरी खाद का लिए उपयोग में आने वाली फसल है सनई और ढेचा। जिन भाई बहनों के पास पानी की सोय है, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ मानसून आने का 15-20 दिन पहला या असिंचित अवस्था में भी मानसून आने का तुरंत बाद भी खेत की तैयारी में हरी खाद की फसल की बोनी बहुत मुख्य रूप से हमारा किसान भाई बहनों करे। सनई और ढेचा की खेती करने के लिए हमारा किसान भाई बहनों के बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से रखनु पड़े, इका हिसाब से बोनी करनु पड़े। और जब हरी खाद की फसल की अच्छी बढ़वार हुई जाए, जब उसका तनों में अच्छो कोमल रोया आई जाए, फूल आने का बिल्कुल थोड़ा दिन पहले, बीज नहीं बने और फूल भी नहीं आए उसका पहले हल या डिस्क हैरो चलाई के पौधा उनके खेत में पलटी के मिलाने की आवश्यकता पड़े। बाद में हमारा किसान भाई बहनों पाटो चलाई के पूरी फसल के मिट्टी में मिलाई दे। बस किसान भाई बहनों उनके ये बात को ध्यान रखनु है कि जब खेत की मिट्टी में हरी खाद के पलटाई रिया है, उना समय खेत में थोड़ा सा पानी भरे हो तो खेत में हरी खाद पलटने का बाद वो आसानी से खाद बनी जाए। हमारा बहुत सारा किसान भाई बहनों ये समझे कि हरी खाद देना से मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता पूरी हो जाएगी, पर उनके ये नहीं मालूम है कि ये हरी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के बढ़ाए और इसका साथ साथ मिट्टी में दूसरा पोषक तत्व जैसे गंधक है, जिंक है, मैंगनीज, तांबा, इनकी भी पूर्ति करे। और सबसे बड़ी बात कि जब हरी खाद के खेत में पलटी के खेत

0: में मिलाएं, उना समय बहुत सारा सूक्ष्म जीव पैदा होए और ये सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार का अलग अलग संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करे और बहुत सारा पोषक तत्व पर्यावरण से लेके हमारी अगली आने वाली फसल के दई दे। हरी खाद से उसका बाद लगाने वाली जो फसल है उके तो बहुत अच्छा पोषण मिले सही, पर सबसे बड़ो प्रभाव पड़े है मिट्टी की उत्पादकता पे, मिट्टी की संरचना पे। हरी खाद से हमारा खेत की मिट्टी भुरभुरी हुई जाए, उमें वायु संचार बढ़ी जाए, जब वायु जाएगी अंदर तो जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ी जाए, उमें यदि हमारी मिट्टी कभी अम्लता ज़्यादा है या क्षारीयता ज़्यादा है तो उका स्थिति में भी उनमें सुधार हुई जाए। तो जिन्ना भाई बहन उनके पास पानी की व्यवस्था रहे, वे 2-3 साल में एक बार उन्हें हरी खाद उनके बिल्कुल लगानी चाहिए अपने खेत में, ऐसी फसल जे हमारे मिट्टी के सुधार दे। बस एक बहुत बड़ी बात जी ध्यान रखने की है वो ये है कि जब हरी खाद उगाए और खेत में उनके मिलाए जब किसान भाई बहनों, तो कभी कभी कहीं होए कि वो बाहर रह जाए, मिट्टी में बहुत अच्छा तरीका से मिले नहीं, तो ऐसी स्थिति में उका में फफूंद या दूसरा हानिकारक जीवाणु भी पनपी जाए। तो बहुत अच्छा तरीका से हमारे किसान भाई बहनों के ये ध्यान रखना है कि ओके पलटते समय इन्हीं बात को ध्यान रखा कि पूरा अच्छा तरीका से पलटी के पूरा उका ऊपर मिट्टी आई जाए, ऊपर से कहीं भी पौधा दिखे नहीं तो उका पे हानिकारक फफूंद या हानिकारक जीवाणु पनपेगा नहीं। तो आज किसान भाई बहनों से हमारा ये अनुरोध है कि भूमि की दशा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए अपना खेत में हरी खाद को उपयोग अवश्य करा। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज कहनू है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, हरी खाद के उपयोग से फसलों की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर आपने जानकारी सुनी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन

तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 7:20 पर वसुंधरा कार्यक्रम में आज सुनिएगा वार्ता, जल संकट। वार्ताकार हैं प्रतिमा सिंह। और सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल हम लेकर हाजिर होंगे 7:35 से। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे लेकर हम हाजिर होंगे प्रातः 8:30 पर। आज कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व खाद्य दिवस के विषय पर वीडीएस फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों से बातचीत के अंश आप सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे कई रोचक जानकारियां। लोक संगीत में मुकेश राठौर और साथियों के गाय लोकगीत आपको सुनवाएंगे 9 बजे से। और 9:25 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे उदित नारायण।

उत्तराखंड का सुगम गायन। प्रातः 9:10 पर आज आप आकाशवाणी के पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज इस कार्यक्रम का 5वां एपिसोड आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत में विट्ठल राजपुरा और साथियों के का पखावज वादन हम आपको सुनवाएंगे। समय रहेगा प्रातः 9:30 पर। प्रतिदिन की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण ठीक 10 बजे होगा और 10:05 से आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ग्यारह बजे फोन करें और गीत सुने ये कार्यक्रम होगा। ये लाइव प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप तक पहुंचाया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:02 से और 12:30 होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 1 बजे। 1:45 पर दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत और 2:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान।

0: कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्तिक्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमा सुरक्षाबलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञान विभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधार वृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तर राज्यानाम् अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके गोवायां तमिलनाडौ पुदुच्चेर्यां अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबल वृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु जापाने भारतस्य अन्तरष्टादश वयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शन परकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुक नायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चंडीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथम दिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडक त्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्नपत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र और कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी आपको दे दें। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सुबह 10:05 से, जैसा कि आप जानते हैं, आप सुनेंगे, होगा हमारा सजीव फोनी कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करते हैं और आपके फ़ोन कॉल के ज़रिए हम मुखातिब होते हैं, आपसे सुनवाते हैं आपकी फरमाइश आपको। और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं वे हमारे फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, 2710223 और 2710224। और साथ ही साथ इंदौर शहर का जो STD कोड है, अगर आप इंदौर के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमें कॉल कर रहे हैं तो उसे लगाना ना भूले। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो श्रोताओं, हमें फोन करना ना भूलिएगा, जुड़िएगा कार्यक्रम MH हॉटलाइन से और सुनिएगा अपनी पसंद के कार्यक्रम, सुनिएगा अपनी पसंद के गीत आज के इस कार्यक्रम में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहां औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से

0: जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा जिसमें जन प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है वसुंधरा।

समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसे विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

0: वसुंधरा में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जल संकट। वार्ताकार हैं प्रतिमा सिंह।
1: स्वस्थ पर्यावरण ही जीवन का आधार है। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि व आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बना है और इन पांचों तत्वों का संतुलन स्वस्थ पर्यावरण के लिए अनिवार्य है। इनमें से किसी की भी कमी या अधिकता संपूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करती है।

के पानी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। आज कृषि और उद्योग क्षेत्रों में जल की बढ़ती हुई मांग के कारण भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। बढ़ते हुए कारखाने, सड़कों का जाल, शहरों में कंक्रीट के जंगल, बढ़ते वाहन, कारखानों के कचरे का जल में बहाना आदि से जल दूषित हो रहा है और जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से केवल 2-3% जल ही उपलब्ध है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, बढ़ती आबादी की वजह से भूमिगत जल का दोहन बढ़ रहा है, जिससे धरती में जल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। जल संकट की समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है। जल संकट के बढ़ने से पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट, कृषि और उद्योगों के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे बरसात में भी काफी कमी आ गई है और दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे उसके किनारे बसे शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। गर्मियां आते ही जल संकट पर बातें शुरू हो जाती हैं। भारत में वर्षा, नदियां, तालाब, कुएं आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। पिछले कुछ दशकों में विभिन्न उपयोगों के लिए भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन बढ़ रहा है तथा भूजल स्तर में लगातार गिरावट आई है। कई इलाकों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। साल भर में होने वाली कुल बारिश का कम से कम 31% पानी धरती के भीतर रिचार्ज के लिए जाना चाहिए, तभी हमारे जल स्रोत, नदियाँ, तालाब, कुएँ जल से भरे रह पाएंगे। लेकिन कुल बारिश का औसतन 13% पानी ही धरती के भीतर जमा हो रहा है। जल संकट बढ़ने का मुख्य कारण यही है। जल संकट का एक कारण जल का अनियमित वितरण भी है। कई इलाकों में पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता है और कहीं कहीं पर इतना जल वितरित हो रहा है कि लोग बिना सोचे समझे पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जल संकट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका जल संरक्षण ही है। पानी का सबसे परिष्कृत स्वरूप वर्षा का जल है। वर्षा जल का संचय कर एक बड़े पैमाने पर जल संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। वर्षा जल संरक्षण के लिए शहरी मकानों और भवनों की छतों पर वर्षा जल संरक्षण संयंत्र लगाकर जल स्तर को बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। इसमें घरों में बिना किसी तोड़ फोड़ के छत के जल को एक ही पाइप में संग्रहित कर फिल्टर के माध्यम से घर में स्थित ट्यूबवेल या टैंक में डाला जाता है। बढ़ते शहरीकरण के कारण जल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल तक हमने गहरे खोद खोद कर पानी की सतह बहुत नीचे पहुंचा दी है। इसीलिए वर्षा के पानी का, चाहे वह कभी भी बरसे, उसका संचय करें, उपयोग करें। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाकर हम वर्षा जल का उपयोग फसलोत्पादन में कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है, तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्यंदन की हानियों से बचाकर फसलोत्पादन के उपयोग में लेना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इस प्रकार से एकत्रित पानी का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस विधि में पानी प्राकृतिक निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्र किया जाता है। जरूरत के अनुसार ऐसे तालाबों के क्षेत्रफल एवं गहराई बढ़ाई जा सकती है। तालाबों में एकत्रित जल की वाष्पीकरण से होने वाली हानि को

रोकने के लिए उन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी पर तैरने वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिससे जल और वायुमंडल का संपर्क टूट जाए और वाष्पीकरण की दर न्यूनतम हो जाए। तालाब की निचली सतह से रिसाव द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए अगर संभव हो तो सीमेंट व कंक्रीट की सहायता से पक्का बनवा देना चाहिए, या फिर तालाब की निचली सतह से जल के रिसाव को रोकने के लिए 8-10 सेंटीमीटर मोटी भूसे की परत लगाकर उसके ऊपर 8-10 सेंटीमीटर मोटी चिकनी मिट्टी की परत लगा देनी चाहिए। जल संकट की स्थिति प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हुई है, परंतु इसके अधिकांश कारण मानव निर्मित ही हैं। बढ़ती आबादी जल संकट का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या बढ़ने से आवासीय स्थलों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वृक्ष ही बादलों को आकर्षित करते हैं, जल स्रोतों के संरक्षण और शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रदूषण करने वाले तत्वों को नदियों तक पहुंचने से रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और धरती के जल स्तर में वृद्धि करते हैं। जल का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों से बहुत अधिक जल की बचत कर सकते हैं। हम पानी का उतना ही उपयोग करें जितनी जरूरत हो। ब्रश करते समय या शेव बनाते समय नल खुला छोड़ देने से लगभग 25 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, अतः इस समय हम नल बंद कर दें। दाल, चावल व सब्जी को धोने में प्रयुक्त पानी का उपयोग हम पौधों की सिंचाई व फर्श साफ करने में कर सकते हैं। नहाते समय शॉवर की जगह बाल्टी व मग का इस्तेमाल करें। अगर वॉशिंग मशीन का प्रयोग करना ही है तो मशीन फुल लोड पर चलाएं। दिन के सबसे ठंडे समय यानी प्रातः या सायंकाल अपने बगीचे में पानी डालें। इसके लिए पाइप की जगह वाटर कैन का उपयोग करें। गाड़ी धोते समय भी पाइप की जगह बाल्टी व मग का उपयोग करें। पाइपलाइनों की खराबी के कारण बहुत सा पानी बर्बाद होता है, अतः हम रास्ते में कहीं भी पाइपलाइन फूटी देखें तो उसकी शिकायत करें। जल संरक्षण के लिए हम अपने इलाके के लोगों को भी जागरूक करें। छत के जल का संचय कर व छान कर घरेलू प्रयोग के लिए शुद्ध पानी पाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, मंदिरों में लगे नल खुले या टूटे रहते हैं। इनकी मरम्मत करवा कर हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है, और इस तरह व्यक्तिगत स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों से हम जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा बर्बादी कृषि क्षेत्र में होती है। खेतों में पौधों में उपयोग के अलावा शेष पानी व्यर्थ बह जाता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाकर हम जल संरक्षण में भागीदारी निभा सकते हैं। जल संकट का एक बड़ा कारण जल प्रदूषण भी है। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। नगरों व महानगरों का गंदा पानी नदियों में जाकर जल प्रदूषण बढ़ाता है। प्रदूषण के कारण छोटी नदियां सूख रही हैं और बड़ी नदियां गंदे नाले में बदल रही हैं। दूषित जल से पारिस्थितिक तंत्र कमजोर होता है तथा मछलियां व जलीय पादप मरने लगते हैं। दूषित जल पीने योग्य नहीं रह जाता तथा इससे डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसी अनेक बीमारियां फैलती हैं। इस जल संकट से उबरने के लिए और स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें प्रकृति प्रदत्त जल स्रोतों, नदी, तालाब,
आदि की सुरक्षा करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि वर्षा की मात्रा में लगातार होने वाली कमी ही जल संकट का एकमात्र कारण नहीं है। प्रश्न यह है कि हम आने वाली वर्षा के कितने भाग का उपयोग कर रहे हैं और कितने भाग को बेकार जाने देते हैं। बारिश के पानी को हम जितना ज्यादा जमीन के भीतर जाने देंगे, भूजल स्तर में उतनी ही वृद्धि होगी और जल संकट से राहत मिलेगी। मिट्टी का कटाव रुकेगा तथा सूखे और अकाल से भी बचाव होगा। अतः वर्षा की एक एक बूंद का भूमिगत संग्रहण करके जल संकट को दूर किया जा सकता है और इस प्रकार हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। यह उक्ति सर्वथा सार्थक है कि रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून।

समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसे विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

0: अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा। जल संकट इस विषय पर आपने वार्ता सुनी। वार्ताकार थी प्रतिमा हस्सी हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।
1: सुनहरे पल।
0: सभी सुनने वालों को राहुल तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आइए मोहम्मद रफी की आवाज में उपहार फिल्म से ये गीत सुनते हैं। इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ताजमहल फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रोशन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने

0: दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्धविराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
6: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes CBDT conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
7: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
5: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report. The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे।
2: बच्चों, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे, जी हाँ, इस कार्यक्रम का वक्त शुरू हो चुका है। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, संयोगिता दीदी। प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जागरूक हैं, बहुत मेहनती हैं, और वो छुट्टियों के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ बच्चों से मुलाकात करवाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है आज के कार्यक्रम में। आज है 7 जून, और 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। और विश्व खाद्य दिवस आप जानते हैं ना बच्चों, यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO ने विश्व के लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन घोषित किया था, और इसे अपनाया गया था 2018 में। पौष्टिक भोजन खाने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है ना बच्चों। दूषित और खराब भोजन से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे अवगत एक दूसरे को कराया जाए, ताकि लोग जागरूक हों और ताजा पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। और बच्चों की ये खासियत होती है ना, आप भी ऐसा करते होंगे, घर में जो सब्जी, रोटी, दाल बनती है उससे अक्सर आप लोग नापसंद कर देते हैं, और ऑर्डर पे तुरंत सब्जी, पराठा, पिज्जा और जो भी आपको पसंद होता है ना, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, वो आप मंगवा लेते हैं। तो आपको पता है कि क्या ये सफाई से तुरंत ताजा बनाया गया है? आप जानते हैं इस बारे में? नहीं जानते? तो इस तरह के भोजन से आप सभी बच्चों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप छोटे हैं, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वही सब कुछ आपकी मांसपेशियों में, आपके रक्त संचार में बहकर आपके शरीर को मजबूत बना रहा है। कोशिश ये करें बच्चों कि घर में मम्मी जो भोजन बनाती है उसे आप लें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: बच्चों मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारे साथ जो बच्चे आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है ना, वो खेल से रिलेटेड हैं। और खेल भी ऐसा बहुत कम लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं इन्होंने जिम्मेदारी ली है इस खेल को खेलने की और इसे लोकप्रिय बनाने की भी। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है VDS फुटबॉल एकेडमी के बच्चे। जी हाँ, और ये सभी लड़कियां हैं और बहुत उत्साहित हैं बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम अनन्या सिंह सेंगर है।
0: अनन्या, कितने साल की हैं आप?
1: मैं 16 साल की हूँ।
0: तो VDS एकेडमी में किस तरह का खेल आप खेलती हैं?
1: मैं फुटबॉल खेलती हूँ और मैं उसमें कीपर हूँ।
0: तो बच्चों, अनन्या फुटबॉल खेलती है और फुटबॉल के इस गेम में ये कीपरिंग करती हैं। कि कीपर का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो हैं अपनी अपनी पोजीशन में ग्राउंड में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन कीपर का काम क्या है ये अनन्या हमें बताने वाली हैं।
1: हाँ दीदी, कीपर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है गोल बचाना, कि हमारी टीम पे गोल ना पड़े
0: और हम जीत जाएं।
1: और हम जीत जाएं।
0: बिल्कुल, जीत की लालसा से ही सभी टीम में उतरते हैं और जीत के बाहर आना ही मतलब एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। पर ये भी कहा जाता है ना अनन्या, कि जब हम खेल खेलते हैं तो सिर्फ जीतने की उम्मीद से ही ना खेलें, अगर हम कभी हार भी जाते हैं तो उस हार से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जब प्रैक्टिस करती हैं तो

0: क्या दिमाग में सिर्फ जीत के लिए ही आप मैदान पर उतरती हैं?
1: मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मैं गोल खाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इस पे कैसे क्या डाइव करना है, क्या 1v1 मुझे जाना है अपनी इस गोल को बचाने के लिए, गोल इसे सेव करना है।
0: बिल्कुल, खास तौर पर खिलाड़ियों की ये बात होती है तो वो तुरंत अपने आप में मन ही मन निर्णय ले लेते हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई है ना, और मुझे कहाँ सुधार करना है। तो अनन्या, कितने घंटे की प्रैक्टिस आप लेती हैं?
1: अभी समर वेकेशन के टाइम पे सुबह भी क्लासेस लगती है, सुबह 6 बजे से 3 घंटे की क्लासेस रहती है हमारी, और फिर शाम को भी 3 घंटे की।
0: टोटल एक दिन में 6 घंटे की आप लोग प्रैक्टिस लेते हैं। फुटबॉल के खेल में हमने देखा है कि लगातार खिलाड़ी भागते रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत को बनाए रखने के लिए डाइट प्लान भी होता है, तो आप किस तरह की डाइट को फॉलो करती हैं अनन्या?
1: अभी जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो हमारी 2 टाइम की प्रैक्टिस रहती है, तो सुबह सुबह जब मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ उससे पहले मैं 1 गिलास दूध और 2 केले खाकर जाती हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस के बीच में भी और पूरे दिन भी मुझे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और हर प्लेयर को और जो प्लेयर नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और जब मैं एकेडमी से वापस अपनी प्रैक्टिस से आती हूँ मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं वेजिटेबल्स वगैरह खाती हूँ जो मम्मी बनाती है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस से पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो खाती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस से आने के बाद शाम को जो मम्मी खाना बनाती है वही दाल चावल वगैरह वो खा।
0: देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात कही ना अनन्या ने कि खेल के ग्राउंड में होती है तब भी अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए लगातार वो ब्रेक लेकर पानी भी पीती है और घर का बनाया हुआ भोजन वो करती है, हरी साग सब्जियां खाती है, तभी वो फुटबॉल के ग्राउंड में इतनी अच्छी कीपिंग कर पाती है। क्यों अनन्या?
1: हाँ,
0: तो सभी बच्चों को इस तरह ही करना चाहिए कि जिस भी गेम में आप हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए। बाजार के जो डिब्बा बंद भोजन है बच्चों, थोड़ी देर के लिए चटपटा अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को वो सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स नहीं दे पाते हैं जो घर के भोजन में मम्मी के बनाए हुए प्यार से जो भोजन बनाती है ना, उसमें जो कुछ मिलता है वो बाहर की चीजों में नहीं मिलता है। अच्छा अनन्या तो कीपिंग करती हैं हमारे साथ, और फुटबॉल के VDS एकेडमी के और भी बच्चियां हैं जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं बच्चों।
2: नमस्कार श्रोता साथियों, मेरा नाम हंसिका राय है, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ।
0: कभी आप लोगों को डांट भी पड़ती होगी, कभी आपको समझाइश भी दी जाती होगी। मान लीजिए किसी पोजीशन पे आप खेल रही हैं और सर ने आपको कहा कि नहीं इस पोजीशन से हट के आप दूसरी पोजीशन पे खेलिए, उस वक्त आप क्या सोचती हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है?
2: उस वक्त बस यही चल रहा होता है कि सर ने ना मतलब बताया है तो मैं इस पोजीशन पर अच्छा नहीं खेल पा रही हूँ तो मैं टीम से बाहर भी हो सकती हूँ, तो मुझे उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, 100% बेस्ट देना चाहिए।
0: हंसिका, अगर इसी तरह की सोच रख कर आप खेलती रहेंगी तो ऐसा लगता है कि आप फुटबॉल के गेम को बहुत आगे तक लेके जाएंगी, बहुत नाम रोशन करेंगी। बच्चों अब हमारे साथ है कोमल वर्मा। कोमल वर्मा ये एक ऐसा नाम है बच्चों जिसने फुटबॉल के गेम को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो किस तरह की कोशिश इन्होंने की है, किस लेवल तक ये फुटबॉल के गेम में आगे गई है, कोमल से हम जानते हैं।
1: जब मैं 12 साल की थी तब मैंने फर्स्ट बार स्टेट्स खेला था, उसके बाद कंटिन्यू मैं अभी तक स्टेट्स खेलने गई हूँ, और मैंने 3 बार अभी नेशनल्स खेले हैं, 2 बार स्कूल गेम में खेला है और 1 बार ओपन नेशनल खेला है, और अभी मैं रिसेंटली ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेल के आई हूँ, उसमें भी हम लोगों की 2nd पोजीशन आई थी। हम रायसेन से हार गए थे, 6-4 का स्कोर था हमारा, वहाँ पे हमारी 2nd पोजीशन आई थी। दीदी मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्रिकेट को जैसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो अभी फुटबॉल को भी सपोर्ट थोड़ा मिलने लगा है। अभी हमारी इंडियंस वुमेन्स टीम U17 एशियन फुटबॉल कप में क्वालिफाई किया था, हमारी एकेडमी में भी गर्ल्स ने मतलब फुटबॉल में इंटरेस्ट दिखाया है और गर्ल्स फुटबॉल खेलने आने लगी हैं।
0: श्रोता बच्चों, मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है ना कि कोमल हमारे इंदौर शहर की ही हैं, डिवीजन स्टेट और नेशनल लेवल तक कोमल गई हैं, तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है ना कि आज हमारे प्रोग्राम में कोमल समय निकाल कर आई है। तो कोमल कैसा लगा था जब आप मतलब लगातार आपकी पोजिशन बढ़ती गई थी और आप आगे खेलने गई थी?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने अभी खेलना स्टार्ट किया था और 12 साल की उम्र में मैंने स्टेट्स लेवल पे खेला था, और फिर जब मेरा लेवल बढ़ा

0: था, मैं नेशनल्स खेलने गई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही मैं अच्छा करती रहूँ और आगे जाती रहूँ। मुझे इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना है और मुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर इंडिया टीम के लिए खेलूँ।
1: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं कोमल के साथ हैं कि वो कड़ी मेहनत करती रहें, ईमानदारी से खेलती रहें, तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जरूर जाएंगी। अपनी एकेडमी का, अपने कोच का और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगी। कोमल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है।
0: थैंक यू दीदी। श्रोता साथियों नमस्कार, मेरा नाम मंशिका वर्मा है और मुझे बहुत खुशी हुई इस कार्यक्रम में आने से।
1: मुझे ये बताओ कि जब कभी आप खेलते हैं और आप लोगों को चोट भी लगती होगी, क्योंकि फुटबॉल का जो गेम है वो लगातार खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, गिरते भी हैं, फिर उठ के खेलते हैं, तो कभी ऐसी गहरी चोट लग जाती है तब फिर आप प्रैक्टिस पे कोई असर पड़ता है आपके?
0: रिकवरी के लिए थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: एक्चुअली मैं भी इंजर्ड हूँ, रेगुलर एकेडमी आ रही हूँ।
1: हाँ,
0: मुझे चोट लगी है पर फिर भी मैं ग्राउंड आती हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले ग्राउंड से, जो सर सिखाते देखकर भी कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल, भले ही ग्राउंड में आप ना जाएं
0: हाँ
1: पर दूसरे प्लेयर्स को खेलता हुआ जब आप देखते हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता
0: हाँ
1: है ना वंशिका?
0: हाँ
1: वंशिका, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं, आपके पैर में चोट लगी है, कौन सा गीत आज हम आपको सुनवा दें अपने कार्यक्रम में?
0: फुटबॉल से रिलेटेड तो बहुत कम सॉन्ग है बट मुझे दंगल फिल्म का सॉन्ग पसंद है तो आप वो सुना दो।
1: खिलाड़ियों के पसंद पर दंगल फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे बच्चों। गीत के बाद एक बार फिर हम आपके साथ होंगे।

0: मेरा नाम तनिष्का यादव है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल के सितारे बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में आई हो। और मैं बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ स्टडी को कैसे मैनेज करा जाता है। 10th क्लास में थी, इस बार मेरी 10th क्लास थी, तो मैंने अपने स्पोर्ट्स के साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करा। मैं सुबह 5 o'clock उठ जाती थी और सुबह रनिंग के लिए और वर्कआउट करती थी कि ताकि मेरी बॉडी अच्छी रहे, स्टेबल रहे। उसके बाद मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद 12 o'clock मैं दिन में जब मेरा जो टाइम था उसमें मैं अपनी ट्यूशन जाती थी, और शाम को 4 से 8 बजे तक मेरा ग्राउंड टाइमिंग था। और मैं वेट करती थी कि मैं कब 4 बजे और मैं अपने स्पोर्ट्स के लिए जाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग कहते हैं कि है ना, तो स्पोर्ट्स के साथ स्टडी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आप स्पोर्ट्स के साथ स्टडी को मैनेज कर सकते हो, और इनफैक्ट करना भी चाहिए। अगर आप स्टडी स्टडी करते रहोगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। आप जब स्पोर्ट्स भी खेलोगे तो आपका माइंड उसी में स्टडी में भी लगेगा और आप अचीव भी करोगे। मैंने 10th क्लास में स्पोर्ट्स भी खेला, स्टेट्स के लिए सिलेक्ट भी हुई और गई भी। कभी स्कूल से भी मतलब ऐसा होता है कि दीदी की फोर्स किया जाता है कि तुम्हारे ये वर्क कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, तुम करोगी कैसे तुम। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स को भी लगता है दीदी की नहीं कर पाएगी, तो वो बोलते कि नहीं अब गेम्स बंद कर दो, नहीं हो सकता। तो मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको फ्रीडम दो, वो आपको रिजल्ट देगी। जैसे इस बार मेरे 10th में 80% दिए थे, तो मेरे मम्मा पापा को प्राउड फील हुआ था कि वो गेम्स में भी गई है, 80% उसने बनाए भी है, सब कुछ करा है। तो मैं तो मैसेज देती हूँ कि पेरेंट्स को कि आज भी कुछ गर्ल्स हैं कि जो चाहती हैं कि उन्हें फ्रीडम मिले और खेले, तो मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगी कि आप उन्हें प्रमोट करें। और ऐसा कहते हैं कि ना लड़कियां लड़कों से कम आते, ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां ज्यादा होती है लड़कों से। अपने इंडिया के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सब कुछ दे सकती है, प्राउड फील करा सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। और अभी जब समर वेकेशन चालू हो रहे हैं, तो अभी मैं फिलहाल सर हमारे सुबह भी क्लास लेते हैं और शाम को भी क्लास लेते हैं, तो सुबह 3 आवर्स मैं सुबह मतलब प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह फील करती हूँ। फिर है ना, कहते हैं कि समर वेकेशन में थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए क्योंकि फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ, फिर शाम को ग्राउंड जाती हूँ, फिर घर जाती हूँ। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा मत कहना कि स्पोर्ट्स खेलोगे तो स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और स्पोर्ट्स भी।
1: तनिष्का का कहना यह है कि सब कुछ संभव है आपकी उम्र में बच्चों, अगर आप ठान लें तो। तो ठानना बस यही है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, और अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो पढ़ाई को भी छोड़ें नहीं। जब आप अच्छे अंक लेकर आएंगे तो माता पिता भी ये कहेंगे कि नहीं जाइए, आप खेल भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। क्यों तनिष्का?
0: हाँ, मैं दीदी एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं सर को भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि हमें इतना सपोर्ट करते हैं और हमें इतने आगे प्रमोट करती है। मैं अभी ज्यादा नहीं हुआ है, मुझे 2 ही साल हुआ है, बट 2 साल में उन्होंने मुझे इतना सिखाया है कि मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ। और वो हमारी जैसे क्लासेस वगैरह होती है, उसके खत्म होने के बाद वो हमें एक साथ ग्रुप में करते हैं, फिर हमसे बात करते हैं और हमें समझाते हैं कि ऐसे से ऐसा होता है और तुम्हें कुछ भी है तो तुम मुझे बताओ। मतलब हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम बहुत जैसे किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक फैमिली की तरह है। तो मुझे सर को भी थैंक्स कहना है कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे, इतना समझा रहे। मैं अपना 100% देना चाहूंगी उन्हें कि उन्हें लगे कि हाँ मैं इस पे एफर्ट्स दे रहा हूँ इन बच्चों पे, तो मुझे अपना 100% दे रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है तुमने कि भाई सर का सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट आप को इसीलिए दे पा रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो जो आपको सिखाते हैं उस पे अपना 100% देते हैं। अगर वहां आप लोग लापरवाही करेंगे तो आपके सर की सोच भी आपके लिए बदल सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, अगर आप अपने कोच सर मैम जो भी हैं उनके बताए रास्ते पर आप चलते हैं तो वो आपके लिए जिंदगी भर खड़े रहते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छे रास्ते पर आपको ले जाने की कोशिश करते हैं।
2: Ladies and gentlemen, a son is a son till he gets himself a wife, but a daughter is a daughter.

तो आप सभी बच्चे जो आज हमारे साथ थे VDS एकेडमी के, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में आए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सभी गर्ल्स को कि वो फुटबॉल टीम का नाम रोशन करें, हमारे इंदौर शहर का नाम रोशन करें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सितारे बच्चे हमारे इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। जी हाँ, आपको बता दें आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे VDS फुटबॉल एकेडमी के फुटबॉल खिलाड़ियों में लड़कियों की टीम हमारे साथ थी। कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का था।

0: संयोगिता दीदी को दें अनुमति।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, लोक संगीत में अब आपको सुनवाते हैं मुकेश राठौर और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गणेश वंदना के साथ।

0: लोक संगीत में श्रोता अभी आप सुन रहे थे मुकेश राठौर और साथियों के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विजय सिंह आपके साथ, और हम एक गाना सुन लेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, जानकारी भरा कार्यक्रम,
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
4: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
4: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देशभर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
5: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राज्य लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरढ़ी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे, और ग्रामवासी भी, और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि, सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
4: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
5: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गाँव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
4: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपकी
5: बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग दिए।
4: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
5: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बाद

0: जब कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल में जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सुक्ता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला बुजुर्ग पर से हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पॉपुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन के सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी अपने कार्योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कुछ प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ताह में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केड़ा का माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केड़ा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल।

0: से धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही है आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती है, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं स्नाच उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं स्नाच उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर है उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय है, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन शाम है। मेरा सोमवार मंगल बुध दिन मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
1: यानी कि लगातार व्यस्त रहते हैं?
0: मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांवों में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए भी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव को बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से उड़िया मतलब पंचायत जिला जैसे शौचालय मुक्त है ना, इसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे जिससे काम महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हरेक व्यक्ति तक पहुँचे इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें

0: आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: अब आपके और हमारे बीच में, यानी कि वतन के राग और हमारे बीच में,
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आइए श्रोताओं, सुनते हैं उदित नारायण का सुगम गायन।

सता। सुगम संगीत में श्रोताओ भी आप सुन रहे थे उदित नारायण का सुगम गायन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अब सुनते हैं विठल राजपुरा और साथियों का पखावज वादन। राग है धमार।

जयति जयति जय जय गणाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुख दायक ऋद्धि सिद्धि के दाता त्रिगुण प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा जयति जयति जय जय गणाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुख दायक ऋद्धि सिद्धि के दाता त्रिगुण प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा जयति जयति जय जय गणाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुखदायक ऋद्धि सिद्धि के दाता त्रिगुण प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा।

Vedam.

मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोड़ा क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जाँच और सफाई का संदेश दिया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 905 गांव एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6,650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39,000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञ के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जाँच

0: बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी, आलेख दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। और आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे मुखातिब होते हैं आपके फोन कॉल के जरिए। आप सब हमसे रोजाना जुड़ते हैं, रोजाना आपकी फरमाइशें हम आप तक, आपके चाहने वालों तक और तमाम सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ ये कार्यक्रम जरिया है पूरी दुनिया को एक करने का, सभी श्रोताओं को रेडियो के जरिए एक करने का। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दें, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको अपना फ़ोन उठाना है और हमें फ़ोन करना है। हमें आपके फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार है। फ़ोन लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो फ़ोन लाइन पर आना भी शुरू हो चुके हैं। पहला कॉल हम बहुत जल्द उठाएंगे, मगर उससे पहले नंबर आपको बता देते हैं, 2710223 और 2710224। हिंदी में कहते हैं 2710223 और 2710224। अगर आप इंदौर से बाहर हैं या जाहिर तौर पर अगर आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं तो आप 0731-0731, ये इंदौर शहर का STD कोड है, इसे ज़रूर नंबर के पहले डायल करें। तो फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए और कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत सुनिए। हो सकता है शायद अगला कॉल आप ही का हो। और एक गुजारिश भी है कि हमारे ऐसे श्रोता जो नियमित रूप से कार्यक्रम को सुनते हैं, लगातार रोज़ाना जिनके फ़ोन आते हैं, अगर आज आपका फ़ोन लगता है तो कम से कम एक महीना या एक महीने से कुछ अधिक समय तक आप फ़ोन ट्राई ना करें, ताकि हमारे जो नए श्रोता हैं उनको कार्यक्रम से जुड़ने का जो अवसर है वो मिल सके। और इस बहाने नए श्रोताओं से हमारी बात और आकाशवाणी रेडियो के जितने भी श्रोता हैं वे नए श्रोताओं से जानने का या परिचित होने का उन्हें भी अवसर मिल सके। तो आइए पहला कॉल उठाते हैं जो हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुका है। देखते हैं हमारे किन श्रोता से हमारी बात होती है। नमस्कार MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी अनिल भंडारे जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन में आपका।
1: आपके प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगता है, आपको बधाई इस बारे में।
0: जी बहुत धन्यवाद और हम आभारी हैं। देखिए, आप जैसे श्रोता जब कार्यक्रम सुनते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों का भी।
1: आपने कल परसों कार्यक्रम दिया था, वो भी अच्छा लगा।
0: जी जी जी, बहुत आभार।
1: गाना अच्छे बजाया आपने।
0: जी जी बिल्कुल। आप
1: कभी कभी हमारे पसंद भी शामिल कर दिया करो आप।
0: नहीं, निश्चित रूप से मैं जब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है भंडारे जी कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं और हाँ। जब पत्र आपका आता है तो निश्चित रूप से हाँ। आपका पत्र हमारे हाथ में होता है और
1: हमें खुशी होगी आप शामिल करेंगे।
0: नहीं नहीं, निश्चित रूप से हर कार्यक्रम में ही शामिल किया जाता है। और मैं आपको सबूत के तौर पर यह भी बता देता हूँ कि आपका पत्र जब आता है तो उसमें अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता, चित्रा, निशा, इस तरह के नाम लिखे होते हैं। बिल्कुल, तो हम करते हैं शामिल जब जब कार्यक्रम में आपको सुनने का मौका मिलता है, शायद तब आपने नहीं सुना हो उसको। बिल्कुल, आज रविवार है, रविवार यानी छुट्टी का दिन, खुशी का दिन, लोगों के आराम का दिन। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज हम पुरानी फिल्म क्षमा का गाना सुनना चाहेंगे।
0: जी,
1: सुमन कलापुर की याद में, सुमन कलापुर नहीं रही अभी।
0: जी बिल्कुल, बीते दिनों उनका देहांत हुआ है,
1: उसको याद करते हुए क्षमा का दिल जल रहा है मगर दुआ न हो।
0: क्या बात है,
1: सारा गीत है,
0: बहुत खूबसूरत गीत है। और
1: गुलाम मोहम्मद का संगीत है।
0: जी,
1: संगीत
0: कैफी आजमी के बोल हैं, गुलाम मोहम्मद का संगीत है।
1: बहुत जोरदार गाना है,
0: बहुत ही,
1: जब भी सुनो कानों में रस घुलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पुरानी यादें ताजा हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए भंडारी जी बिना देर किए फिर आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचाते हैं और हमारे तमाम सारे श्रोताओं को भी ये गीत जो है उन पेश करते हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, MH हॉटलाइन।
1: डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर केक और राहुल जी की प्रस्तुति लाखों में एक।
0: आवाज से ही हम पहचान जाते हैं कि हमारे कौन ऐसे श्रोता हैं जो हमें कुछ इस तरह, इस अंदाज में जो है मिलते हैं या हमसे बात करते हैं। तो आप हसीना जी मंसूरी बात कर रही हैं, हमारी श्रोता
1: जी। हसीना जी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं चाहूंगा कि इस तरह अगर सभी श्रोता रहेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों से बात करने का मौका हमें मिल जाएगा।
1: तो ये फिल्म का नाम है विजय और गाने के बोलने

लता जी बिल्कुल लता जी और सुरेश वाडकर की आवाज है, बहुत खूबसूरत गीत है। तो लीजिए बिना देर किए आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं विजय फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्कार राहुल महाराज जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है सर। किन श्रोता से बात हो रही है, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, श्रीनगर जिला महोबा से।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। और कैसा मौसम है वहाँ का, कैसा माहौल है वहाँ पर?
1: बहुत गर्म मौसम माहौल है।
0: अच्छा, महुआ में भी जो है टेम्परेचर हाई है?
1: जी
0: जी जी जी। और क्या करते हैं वहाँ पर आप?
1: जी मेरी किराने की दुकान है, वहीं बैठ के आपको सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, मतलब रेडियो और किराने की दुकान, ये तो बहुत पुराना साथ है साहब।
1: जी
0: चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं सर?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा बीबी हो तो ऐसी।
0: जी
1: और गीत है फूल गुलाब का, लाखों में एक चेहरा आ जा।
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए अरविंद जी, तो आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौड़वाल की आवाज में, समीर का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार सर
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: कोटा राजस्थान से भूपेंद्र कुमार गुप्ता।
0: बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता साहब आपका कार्यक्रम में। और कोटा राजस्थान से, राजस्थान से हमारे श्रोता का फोन आया है। राजस्थान में गर्मी का आलम क्या है?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी।
0: अभी प्री मानसून की बारिश के बाद भी थोड़ी गर्मी ज्यादा है या कम हुई है?
1: ज्यादा हो गई, अब तो थोड़ी बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: थोड़ी सी बारिश आई थी, थोड़ी सी उसके बाद उमस हो रही है। गर्मी तो क्या है, उमस है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो गुप्ता साहब इस
1: ज्यादा पसीना आता है उमस।
0: बिल्कुल, उमस भरे मौसम,
1: गर्मी ज्यादा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस उमस भरे मौसम में गीत कौन सा सुनवाए आज, जिसकी ठंडक जो है वो हमारे श्रोता के कलेजे तक पहुंचे?
1: लाल बंगला फिल्म का है, सुनाई दे न दे तुमको हम आवाज देते हैं।
0: क्या बात है, बड़ा खूबसूरत सा गीत है। किसे नजर करना चाहेंगे, किसे समर्पित कर रहे हैं ये गीत?
1: ये तो पूरे श्रोताओं को, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि ये जुना गाने बहुत कम सुनाई।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: मेरा एम एक ही है कि जो पुराने मधुर गीत हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इनको तैयार किया है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: शायद अब आगे मिले नहीं मिले ये गीत,
0: सही है, सही है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल, चलिए, बहुत ही
1: मकसद है मेरा।
0: जी बहुत नेक ख्वाहिश है आपकी। और निश्चित रूप से उषा खन्ना का संगीत बद्ध किया हुआ गीत है ये।
1: पुरानी पिक्चरों में भी बहुत मधुर मधुर गीत है,
0: बहुत खूबसूरत गीत हुआ करते थे। तो चलिए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं लाल बंगला फिल्म से गीत। आशा भोसले जी की आवाज है, इंदिवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। जी
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोक नगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है यादव जी। और कैसे हैं अशोकनगर में सब लोग, आपके मित्र, आपके परिजन?
1: सब कुशल मंगल है, ईश्वर की कृपा है।
0: चलिए।
1: और रेडियो से जुड़े रहते हैं, आपके कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं।
0: वो खुशी का एक अलग जरिया है आपके लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। सही बात है। तो आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको यादव जी?
1: फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा और गाने के बोल हैं सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए।
0: चलिए, बड़ा खूबसूरत सा गीत है। और आपने जिस अंदाज में आपकी आवाज में कहा है, मुझे लगता है किसी के लिए ये गीत है।
1: नहीं, वैसे गाने में सुनता रहता हूँ।
0: जी जी जी, चलिए।
1: बाकी सभी श्रोताओं के लिए डेडिकेट रहेगा, आपके लिए भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभार आपका कि आपने कॉल किया। और निश्चित रूप से आप कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, ये हमारे लिए। जी जी जी, तो आइए आपकी फरमाइश। जी,
1: 22 तारीख को जो कार्यक्रम आया था,
0: हाँ हाँ,
1: उसमें ही मेरा कॉल आपने अटेंड किया था।
0: जी बिल्कुल, मुझे याद है अच्छे से। और आपने हमारे अधिकारियों से बात की थी उस कार्यक्रम में। जी जी, चलिए। तो ये गीत हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया है, संजय चहल ने लिखा है, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा। आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं सभी श्रोताओं को।
1: जी सर, थैंक यू।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महर्षि गर्ग।
0: महर्षि गर्ग बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो महर्षि?
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: श्रीनगर जिला महोबा से बात कर रहे हैं, और आपकी आवाज से तो हम पहचान पा रहे हैं कि आप तो एक स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, छोटे जो है 15-14 साल के बालक हैं।
1: नहीं, 10 साल के।
0: 10 साल के हैं आप? अरे वाह, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। तो आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं छोटे बच्चे?
1: नहीं, हमारे पापा सुनते हैं, तो आज हमने बात करी।
0: क्या बात है, मतलब पापा सुनते हैं तो उनके साथ साथ आप भी सुन लेते हैं। चलिए, बढ़िया बात है। और अभी तो गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। बढ़िया बढ़िया। और क्या क्या शौक रखते हैं श्रीनगर में जब आप पढ़ते हैं लिखते हैं, तो क्या खेलने का या कलाकारी का, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों की पसंद होती है ना, आप क्या करते हैं?
1: खेलते हैं, पढ़ते हैं।
0: बढ़िया बढ़िया। और मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं कि नहीं घर पे काम में?
1: बताती हूँ, मम्मी का ही बटाती, कुछ काम करते पापा का ही करते दुकान में।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हम आपके हैं, कौन फिल्म का?
0: कौन सा गीत?
1: जूते दे दो, पैसे दे दो।
0: अच्छा, चलिए ठीक है महर्षि, आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: आदरणीय राहुल जी नमस्ते।
0: बहुत बहुत स्वागत है सर। कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात हो रही है हमारी?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद का छोटा भाई मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ राहुल जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है तस्लीम शेख साहब, और जिस अंदाज में आपने परिचय दिया है बहुत खूबसूरत बात है। आपके बड़े भाई जो हैं उनका नाम आगे करते हुए आपने फिर अपना परिचय दिया है, बड़ी खूबसूरत बात है
1: जी। तो बड़ा भाई पिता समान होता है ना?
0: नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और हम जिस संस्कृति से हैं, हम जिस गंगा जमनी तहजीब से हैं, वहाँ तो बड़े भाई का एक अलग ही महत्व है समाज में। वो छोटे भाई का ख्याल रखते हैं, वो कई बार हमारे दोस्त बनते हैं, कई बार हमारे पिता बनते हैं, बहुत अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और रेडियो पर इतनी अच्छी बातें होना, हमारे तमाम सारे श्रोता सुन रहे हैं जो जहाँ से देश भर से सुन रहे हैं, तो वो भी इससे कहीं कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। गीत कौन सा सुनवाए आज, ये बताएं आप। अब
1: हम दोनों फिल्मों के गीत है, मोहम्मद रफी साहब के याद में कभी खुद पे कभी हालत पे रोना आया।
0: क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गीत है, और मुझे लगता है कि बिना देरी के अब हमें अपने सभी श्रोताओं को सीधा ये गीत ही सुनवा देना चाहिए। तो आइए, आपकी पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: शुक्रिया सर,
0: बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: सर जी नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है। किनसे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी बात हो रही है सर आपके आकाशवाणी के नियमित श्रोता से, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर के नियाज मोहम्मद मंसूरी से बात हो रही है सर आपकी।
0: बहुत बहुत स्वागत है मंसूरी साहब, और हमें बहुत अच्छे से याद है कि आप हमारे उन श्रोताओं में से एक हैं जो हाथ से पत्र लिखकर हमें भेजते हैं। आपकी खूबसूरत जो राइटिंग है उसमें पत्र आते हैं। आज के दौर में हाथ से पत्र लिखना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकते हैं हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मैं बिल्कुल आपने तारीफ की इसके लिए, मैं इसका मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं, आपने सब कुछ उसमें बात अदा कर दिया।
0: नहीं, ये आपका एक मुख्तलिफ अंदाज है कि साहब देखिए लिखने में टाइप करने में आजकल तमाम तरह के माध्यम है, पर आप हाथ से लिखते हैं और इस कारण से वो याद रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल याद रहता है। बिल्कुल सर, बात अच्छी बात है। आपका मैंने अभी एक लेटर लिखा है, उसमें एक सड़क का मिलेगा आपको और बीबी होते इसी का, जो पता नहीं मुझे क्यों इस उम्र में 57 साल की उम्र हो गई है और दिमाग भी ऐसा चलता है और लिखने की पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसा लिख देता हूँ, मेरे खुद को पता नहीं।
0: बराबर बराबर। तो आज कौन सा गीत सुनवाए मंसूरी साहब आपको?
1: मुझे जीने नहीं दूंगा का गाना है सर आज, और रेशमा और बादल तुमसे वाला गाना है।
0: ठीक है,
1: याद ना आया करो
0: जी। लता जी और शब्बीर कुमार की आवाज है,
1: शब्बीर कुमार की आवाज में सर।
0: चलिए
1: शुक्रिया,
0: तो बिना देर के
1: चल रहा था
0: जी जी जी
1: सुनाइए सर
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं गीत।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: जी नमस्ते, हमारे किन श्रोता से बात हो रही है हमारी?
1: मैं ना रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: बहुत बहुत स्वागत है रानू जी आपका कार्यक्रम में। और अब तो खैर इंदौर के बहुत नजदीक हैं इंदौर के। हाँ,
1: अरे आपके क्या हाल चाल है?
0: हमारे हालचाल बढ़िया हैं। और निश्चित रूप से जब आप जैसे अच्छे श्रोताओं से बात हो जाती है तो फिर तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान थोड़ा उदास भी होगा तो इस तरह की जोश और ऊर्जा के साथ बात करने वाले श्रोताओं से बात करके तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी। तो हम सब लोग खैरियत से हैं, बढ़िया हैं। और रेडियो पर आपकी पसंद के गीत आप तक जो है सुनवा रहे हैं।
1: हाँ, तो ना मुझे एक गाना सुनना है
0: जी।
1: मूवी का नाम, मतलब पुराना सॉन्ग है, नया तो नहीं है।
0: अच्छा,
1: लेकिन मुझे पुराना ही सॉन्ग सुनना था। मूवी का नाम है अजनबी और गाने के बोले मैं सिर्फ तेरा महबूब या फिर तू सिर्फ मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा, इसी के अकॉर्डिंग हाँ, कोई सॉन्ग है।
0: राइट राइट राइट, टाइटल सॉन्ग ही है उस फिल्म का।
1: हाँ, तो मुझे ना, मैंने ना बहुत साल में ये सॉन्ग सुन रही हूँ, मतलब 4-5 साल से तो नहीं सुना इस सॉन्ग को। हाँ
0: बढ़िया बढ़िया। और अगर हम देवास के हालचाल पूछे तो देवास के क्या हालचाल होंगे?
1: ठीक है, अभी तो धूप निकली हुई है अभी। हाँ, 2 दिन से ब्रेक ले लिया है बारिश ने।
0: हाँ वो तो है, आंधी तूफान और बारिश थोड़ा सा कम हुए हैं। और
1: मैं तो ये चाहती हूँ ना, शाम शाम को ना ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए और सुबह सुबह।
0: बिल्कुल, वो तो सुबह सुबह तो खैर हवा चलती है लेकिन दिन

0: में उमस का माहौल या गर्मी का माहौल ज्यादा होता
1: है ना, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ना, तो सुबह सुबह अभी तो चल ही नहीं रही है वो आंधी तूफान के बाद।
0: जी जी जी, तो ठीक है ना रानू जी, वो तो अब देखिए मौसम है और आप ये जानती हैं हमेशा कि मौसम जो है उसका कोई हमारा बस उसके ऊपर नहीं होता है।
1: पर दुआ तो कर सकते ऊपर
0: वाले। हाँ निश्चित, और आने वाले दिनों में बारिश होगी तो कहीं ना कहीं मौसम से थोड़ी राहत भी हमें मिलेगी। तो ये तो हमने की बातें मौसम की या तमाम सारी चीजों की। अब आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाएं जहां तक फरमाइश की बात है।
1: हाँ बिल्कुल, प्ले कर दीजिए।
0: है ना, तो आइए आपकी पसंद पर सुनवाते हैं आपको अजनबी फिल्म से गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे एमएच हॉटलाइन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रक्षा।

0: तवर आपकी रेडियो दोस्त। हम आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से, जिसका प्रसारण होता है अगले दिन सुबह 11 से। हमारे फोन नंबर हैं 2660902 और STD कोड है 0755। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है और चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेंदुखड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है? अब तो बारिश थोड़ी हो गई होगी।
1: हाँ बारिश हो जाती है, शाम को या सुबह हो जाती है।
0: चलिए तो बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम सुनना चाहते हैं मुस्कान फिल्म का गीत के बोल है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए आपका जो गीत है हम खोज लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया
1: के लिए, देर रहेगा मैडम ये आपके लिए भी रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं कोलारस से हरिशंकर खेमरिया बोल रहा हूँ, जिला शिवपुरी से।
0: हरिशंकर खेमरिया जी,
1: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या करते हैं हरिशंकर जी आप?
1: मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, पहले शिक्षक था।
0: अरे वाह, क्या पढ़ाते थे आप?
1: प्राइमरी सेक्शन 1 से 5 तक।
0: अच्छा,
1: छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं।
0: अच्छा जी, कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करिश्मा कुदरत का फिल्म का नाम है और गीत के बोल है, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी है दुनिया की रीत रे।
0: जी, गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाई देते हैं हरिशंकर जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: भगवान सिंह परमार जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी।

0: स्वस्थ हैं, आप कैसे हो?
1: मैं भी बढ़िया हूँ, और बताइए क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
0: अभी तो मौसम बहुत गर्म है, काफी गर्मी पड़ रही है दीदी हमारे इधर तो अभी, और तो एक दो चार दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी दीदी, उससे कुछ टेम्परेचर गिर गया है गर्मी का।
1: तो थोड़ी बहुत राहत मिली होगी?
0: जी हाँ दीदी, थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी 3-4 डिग्री से बहुत फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से गिरने से।
1: हाँ जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
0: गुड बॉय बैड बॉय और गाने के बोले मेरी मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम जो थाम ले दामन बदल जाएंगे कदम, ये वाला गीत सुनना है दीदी?
1: बिल्कुल, आपका जो गीत है आपको सुनवाई देते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बैठे हुए, बहुत सारे आम लगे हुए हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, तापमान भी कम हो गया है तो बगीचे में बैठने में अलग आनंद आ रहा होगा आपको।
1: तापमान तो बहना जी एकदम ठंडा, क्योंकि बारिश हो चुकी है ना हमारे गाँव बुंदेलखंड में।
0: जी जी जी जी जी, तो राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में आज?
1: मूवी का नाम इतिहास।
0: इतिहास फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जुदा अपने दिल भर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी।
0: अलका याग्निक जी की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं, बस आपके रेडियो सेट्स पर ये गीत आपको सुनाई देगा।
1: के नाम ले लें क्या भाई?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे मित्र है बलवान सिंह यादव है, अनूप कुमार राजपूत जी है, महेश राजपूत है, ग्राम उपरेंका, थाना मुस्करा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते, अम्बेडकर चौक से अगर वार्ड खोराई से
0: राम सखी परमानंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना चल रहा है ना, जानते हो आप, 15-20 दिन तक बरसात आ जाए तो ठीक है।
0: अच्छा, तो अभी आपके वहाँ पर बारिश नहीं हुई है? बहुत सारी जगहों पे थोड़ा तूफान आया, थोड़ी बारिश हो गई तो थोड़ा ठंडक हो गया है।
1: आंधी हवा तो चली है मगर बरसात नहीं हुई है।
0: अच्छा,
1: हम लोग देख रहे हैं अब जब तक हो जाए, 20 तारीख तक जहाँ तक मानसून आने की संभावना है।
0: चलिए बढ़िया है, यही उम्मीद करते हैं कि समय से मानसून आ जाए और थोड़ा राहत मिले, थोड़ी ठंडक मिले। आप कार्यक्रम में कौन सा आज गीत सुनना चाहते हैं बताएं?
1: डंकी का कोई भी गीत सुना दे।
0: तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर। राम सखी जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम,
0: किनसे बात हो रही है?
1: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील विजयगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
0: बद्री प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम
0: जी
1: राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: आपकी पसंद का गीत अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बद्री प्रसाद जी।
1: थैंक यू मैडम।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं नेपाल से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: तिलक राणा जी, कैसे हैं आप? आपकी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं और बहुत अच्छे गीतों की आप फरमाइश करते हैं
1: और आप लोग हमारे पत्नों को प्राथमिकता भी देते हैं।
0: जी जी जी, तिलक राणा जी कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
1: एक्चुअली मैडम, मैं डॉक्टर हरी सिंह को केंद्रीय विश्वविद्यालय में एलडीसी के पद पे कार्यरत था।
0: अच्छा जी।
1: सन 2024 में मैं रिटायर्ड हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अभी किस तरह की होती है दिनचर्या, क्या करते हैं?
1: कुछ मॉर्निंग में उठते हैं सवेरे, थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं, और अभी तो गर्मी का समय चल रहा है तो वैसे भी आलस कर रहे थे, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, ये तो है, ये तो अभी सभी जगह का है। कुछ जगहों पे थोड़ी बारिश हो गई है तो तापमान कम हुआ है, थोड़ी राहत है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैम आज मुझे लोक परलोक का गाना मिल जाएगा।
0: लोक परलोक फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: लोक परलोक का वो वाला गाना है मैम, बादल कब बरसोगे।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं लोक परलोक से। कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्ते
1: फोन करे गीत सुने।
0: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
1: मेरा नाम मैडम जसराम जाटव है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला सीपी से, गांव का नाम जोराई।
0: कैसे हैं जसराम जी?
1: बढ़िया मैडम।
0: तो कार्यक्रम जो है वो फोन करें गीत सुने, इसमें आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमको सुनना है मैडम गाने के बोल रहेंगे मेरा पिया घराया हो राम जी। मूवी का नाम तो मैडम मेरे को याद नहीं है।
0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गीत है।
1: हाँ,
0: फिल्म याराना से।
1: मैडम मैडम परिवार वालों का नाम लेना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे भाई है रघुवीर जाटव और एक और भाई है हमारे लहरी जाटव और हमारे भतीजे हैं पिंकी जाटव, संजय जाटव, प्रिंस जाटव, सचिन जाटव।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं गुना से बात कर रही हूँ, सरिता शर्मा।
0: सरिता शर्मा जी, गुना से
1: जी।
0: कैसी हैं आप
1: जी? हम, और आप कैसी हैं मैम?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हाँ बढ़िया हैं। क्या? और बहुत खुशी हुई कि आज नंबर लगा है, हमारी फरमाइश का गीत हमें सुनने को मिलेगा, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस नंबर बहुत लगाते रहते हैं, लगता ही नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आज लग गया है आपका फोन और आज आपको जरूर हम आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएंगे। क्या करती हैं वैसे सरिता जी आप?
1: मैं शिक्षक हूँ, 9 से 12 तक हायर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं आप, बताएं
1: जी? आप सुनवाएं ये साजन फिल्म का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: साजन फिल्म से
1: जी
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, हमारे पास उपलब्ध है।
1: जी
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने तथा स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। वहीं प्रदेश में भी भोपाल और शिवपुरी सहित कई जगह पर संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत ने 9 करोड़ से अधिक विशिष्ट आभा कार्ड जारी किए हैं और 1 करोड़ से अधिक डिजिटल चिकित्सा विवरण आभा कार्ड से जोड़े गए हैं। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव के तहत आज निमाड़ी गायन, उत्तराखंड का तांदी नृत्य, कर्मा नृत्य, पनिहारी नृत्य, महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति भी होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। नेपाल पैलेस सागर से तिनक राना, मीना राना, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। आप सब ने सुनना चाहा है राम बलराम फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब सुनिए खुशबू फिल्म का ये गीत, आशा भोंसले की आवाज में गुलजार का गीत है और राहुल देववर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल।

चक के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, सरोज चौक, अमरावती, महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी पार्क अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबने सुनना चाहा है जब जब फूल खिले फिल्म का ये नगमा, मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनिए दयावान फिल्म का ये गीत। अजीज कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, रानी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालेग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, रूपा खेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं दयावान फिल्म का।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, खामोशी फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, गुलजार का गीत और संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत की फरमाइश भेजी है मेसवेड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट, राजेंद्र नगर गंज बासोदा जिला विदिशा से भारा चंद साहू, राज साहू, करिश्मा साहू, अजय साहू और प्रेमा बाई साहू। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये नगमा।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: प्रधान के प्रधान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की दूसरी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रायबरेली की साई नदी पर कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले 2 मजदूरों शंभु पासवान और यशवंत दलित मजदूरों की दुर्दशा, उनकी भूख व दूसरी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मजदूर यूनियन के नेताओं की कमियों पर टिप्पणी करते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर पर यूनियन के पैसों का गबन करने के कारण उसे यूनियन से हटाए जाने की बात चलती है। यूनियन

अभी तक दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, अतः यशवंत को राम बहादुर की जगह प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की कोशिशें तेज होती हैं। नारायणी चारिंगखेरा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट में मजदूरी करके अपना पेट भरती है। उसका ब्याह तो हो चुका है मगर गौना नहीं। साइट के मैनेजर का छोटा भाई चौधरी नारायणी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे गर्भवती बनाकर चला जाता है। अब आगे

0: क्या कह रही है नारायणी तू? उस चौधरी का बीज तेरे पेट में?
1: हाय हाय, तेरी मति मारी गई है क्या? अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तू शिबू की अमानत है।
0: मुझसे बड़ी भूल हुई काकी, मुझसे बड़ी भूल हुई। जमीन पर रहकर मैं आसमान छूने चली थी, मगर अब तो मैं पाताल में धस गई हूँ। बस काकी, अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता।
1: देख नारायणी, देख, अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी बात मुझसे कह।
0: काकी, मेरे लिए सिवाय मौत के दूसरा रास्ता क्या है?
1: नारायणी,
0: मन करता है कि इसी समय नदी में डूब मरूं।
1: खबरदार, खबरदार नारायणी, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अरे ये जीवन तो भगवान का दिया है, इसे लेने का अधिकार केवल भगवान को ही है।
0: तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं काकी? आज नहीं तो कल दुनिया को इस बारे में तो पता चलेगा ना। किस तरह दिखा पाऊंगी दुनिया वालों को अपना मुंह?
1: तो चिंता ना कर नारायणी, चिंता ना कर, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, भगवान पर भरोसा रख।
0: काकी, क्या भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे? मुझे इस बदनामी से भगवान बचा लेंगे क्या?
1: अरे क्यों नहीं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। देख नारायणी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, इसका जिक्र किसी दूसरे से ना करना।
0: लेकिन इससे होगा क्या काकी?
1: तू बहुत ना बोल नारायणी, हमारी बात को ध्यान से सुन। हाँ, क्या नाम है उसका? शिबू। हाँ शिबू, देख हम उससे मिलके तेरे गौना की बात कर लेंगे।
0: काकी, काकी, क्या वो मेरा मेरा गुनाह क्षमा कर देंगे?
1: अरे क्षमा तो वो जब करेगा ना, जब उसको कुछ पता लगेगा।
0: भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, अपना अपराध छिपाकर जिंदगी भर उनका सामना किस तरह करूंगी मैं, किस तरह करूंगी?
1: अरे तू दिमाग पर अधिक जोर ना डाल। देख नारायणी, मेरी बात को ध्यान से सुन। गौना होने के एक महीना बाद शिबू को कहना कि वो बाप बनने वाला है। अरे बच्चा तो 7 मासा 8 मासा होना कोई नई बात नहीं है ना, इस तरह तेरी इज्जत बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ नारायणी, हमारी बात मान ले नारायणी, इसी में तेरा भला है।
0: ठीक है काकी, आप मुझसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
1: हाँ बेटा,
0: आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
1: हाँ ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक, हम आज ही जाकर शिबू से बात करते हैं। हाँ तू घबराना।
2: नारायणी, तुम नहीं जानती नारायणी, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ।
0: किस्मत तो मेरी जागी है जी, जो आप जैसा पति मुझे मिला।
2: नारायणी, सच बात तो यह है नारायणी कि भगवान ने हम दोनों का संयोग स्वर्ग में ही लिख दिया था। और हम दोनों ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया है ना?
0: जी स्वामी, आज हमारे मिलन की पहली रात है।
2: नारायणी,
0: अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना?
2: अरे नारायणी, कैसी बात करती है तू? अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब तू जानती है ना तू?
0: जी, इसका मतलब हुआ कि मैं आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ।
2: अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। बस इसी तरह मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा हूँ, यानी कि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए हैं, है ना? इस नाते हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना होगा, तभी तो हम अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, है ना
0: जी?
2: क्यों नारायणी, तुम मेरी बात से सहमत हो ना?
0: जी, पति का वचन तो परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। क्या कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से असहमत हुआ जा सकता है?
2: नारायणी, तुम कितनी अच्छी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना, कुछ मांगना चाहती थी।
0: हाँ जी।
2: तो फिर कहती क्यों नहीं, कहो ना।
0: पहले आपको वचन देना होगा।
2: वचन
0: जी?
2: पहले बताओ तो सही।
0: नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए ना।
2: अच्छा बाबा, अच्छा, लो मैंने वचन दिया। आप कहो क्या कहना चाहती हो।
0: मुझसे भारी भूल हो गई है, भारी अपराध हुआ है मुझसे। हाँ, आपको मेरी इस भूल को क्षमा करना होगा।
2: नारायणी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे भला ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो?
0: वो बात ये है कि मैं
3: देख नारायणी, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी जिंदगी, नरक बन जाएगी।
2: ए नारायणी, ये क्या बात है? अरे तुम ये कहते कहते क्या सोचने लगी नारायणी?
0: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
2: अरे तो फिर बताओ ना, अरे तुमसे कौन सा गंभीर अपराध हुआ है, बोलो।
0: बात ये है कि
2: हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो।
0: नहीं, वो अभी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इंसान से गलती तो कभी भी हो सकती है ना, इसलिए क्षमा करने का वचन पहले ही मांग लिया आपसे।
2: ओ नारायणी, तुम भी ना। कोई बात नहीं। ए नारायणी
0: जी,
2: हमें मिलन की इस रात को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायणी, इधर आओ, आओ मेरी बाहों में आओ।

0: नारायणी
1: आपकी बाहों में कितना सुख है स्वामी, इस सुख की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है।
0: और मेरा भी। देखो नारायणी, हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी रूपी बगिया को प्यार से सींचेंगे। मैं दुनिया के सारे सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ए नारायणी, मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूंगा। मलिका
1: नारायण।

0: सुनो, कह रहे हैं कुछ सुनो।
1: आज की ये आम सभा यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर को यूनियन का धन गबन करने के आरोप में उनके पद से हटाए जाने के विषय को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन राम बहादुर ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, साथ ही यूनियन का धन वापस लौटाने का वादा किया है, अतः उन्हें क्षमा दान दिया जाता है। यदि आप में से किसी को कोई भी संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है। मेरे विचार में हमारे निर्णय के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
2: क्या आप भगवान हैं अध्यक्ष महोदय?
1: नहीं, मैं आप लोगों का अपना साथी हूँ, किंतु यशवंत, तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, शायद ही किसी की समझ में आया हो।
3: यशवंत के प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय।
1: शंभू, तुम इस नादान का समर्थन कर रहे हो।
3: क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, नादान कौन है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आप भगवान नहीं हो सकते।
1: क्या मतलब है तुम्हारा शंभू?
3: अध्यक्ष महोदय, मतलब ये कि राम बहादुर ने हो सकता है कि आपके सामने गलती मान ली हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे मिल गए हो।
1: शंभू पासवान, क्या तू जानता है कि तेरे इस आरोप का क्या परिणाम होगा?
4: महोदय, मैं डेढ़ टांग का जरूर हूँ, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि शंभू का परिणाम उसकी मौत से अधिक नहीं हो सकता।
1: अरे ओ लिचू, तेरे कहने का मतलब क्या है?
0: लिचू के कहने का क्या मतलब है और शंभू आपको क्या समझाना चाहता है, ये बात आपको पल भर में समझ आ जाएगी।
1: लगता है आप सभी दलित मजदूर आपस में सलाह करके आए हैं कि आज की आम सभा नहीं चलने देंगे।
0: गलत, बिल्कुल गलत। ये सोच तो आपकी है अध्यक्ष महोदय, अन्यथा आप राम बहादुर का पक्ष स्वयं नहीं रखते, बल्कि राम बहादुर अपना पक्ष खुद इस आम सभा में रखता।
5: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं?
0: इसलिए कि तुमने मजदूरों के ब्लड बैंक पर डाका डाला है राम बहादुर, मजदूरों के खून पसीने की कमाई को यूनियन के नाम पर हजम किया है तुमने। यहाँ मौजूद मजदूर इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
6: हम इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
1: शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए, हो हल्ला मचाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
0: अध्यक्ष महोदय, रवि कांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजदूर साथियों, अतः आप लोग शांति का दान दीजिए। यदि मजदूर भाइयों की ओर से अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की ओर से मैं बातचीत करूं।
3: अध्यक्ष महोदय, आपको कोई इतराज है?
1: नहीं नहीं।
0: तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप यूनियन के प्रभावशाली जिला अध्यक्ष हैं, आपको जिला स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आम सभा में आम सदस्यों की सहमति के बिना नहीं।
1: यशवंत, तुम मेरी पावर को ललकार रहे हो।
0: क्षमा करें महोदय, मैं तो सिर्फ अपने मजदूर भाइयों का पक्ष रखना चाहता हूँ। आप बहुमत के बिना अल्पमत में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानून सम्मत नहीं होगा।
1: ओह, तो तेरे पर निकल आए हैं।
0: गलत महोदय, गलत। ये मुहावरा चींटियों पर फिट बैठता है, इंसानों पर नहीं, और मैं एक इंसान हूं।
1: चलो चलो, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अब तुम बताओगे कि आम सभा का निर्णय क्या होना चाहिए?
0: राम बहादुर की यूनियन से बर्खास्तगी।
6: बर्खास्तगी, बिल्कुल बर्खास्तगी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: ठीक है, मैं आम सभा की राय का सम्मान करते हुए राम बहादुर को यूनियन से निकालने का ऐलान करता हूँ, किंतु इस स्थान पर किसी की नियुक्ति तो करनी होगी ना, इसलिए मैं।
3: ठहरिए अध्यक्ष महोदय,
1: अब क्या परेशानी है शंभू? आम सभा की राय से मैं सहमत तो हो चुका हूँ।
3: आज तक यूनियन में दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया।
4: तो फिर हमारी इच्छा है महोदय कि इस बार होने वाली नियुक्ति में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि रखा जाए।
1: अरे वाह वाह, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम यूनियन में अनपढ़ गवारों को रख लें?
4: सावधान अध्यक्ष महोदय, वो

0: माना गुजर गया जब दलित सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार होकर अशिक्षित रह जाया करते थे। अरे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी भगवान की कृपा से आज हमें बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आज दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं।
1: हाँ हाँ होंगे, मगर तुम लोगों के बीच ऐसा कौन है जो पढ़ा लिखा है?
2: क्यों नहीं, हमारा यशवंत मैट्रिक पास है। हम यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यशवंत के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
1: सुनो मजदूर साथियों, अध्यक्ष पद का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुमत का सम्मान करे। इस नाते मैं राम बहादुर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त करता हूँ। उसके स्थान पर आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दलित समाज के नए नेता यशवंत को नियुक्त करता हूँ।
2: भाई यशवंत,

0: नारायणी, ओ नारायणी, अरे कहाँ हो तुम?
1: आती हूँ जी।
2: जी कहिए, क्या बात है जी? ये मुंह क्यों लटका रखा है?
3: नारायणी, बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी।
2: हाँ, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
3: ब्राह्मण महाराज की मृत्यु हो गई है।
2: क्या?
3: नारायणी, अब मेरे पास कोई काम नहीं रहा। एक बार फिर मैं बेकार हो गया।
2: अब क्या होगा जी?
3: वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा?
2: उसकी चिंता ना करो जी, मैं तो मजूरी कर ही रही हूँ ना।
3: सो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि घर बैठे मैं खाट तोड़ूं और तुम मजूरी करने जाओ? क्या एक मर्द को ये शोभा देगा?
2: भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे।
3: देखो तो नारायणी, कौन आया है?
2: हाँ, अभी देखती हूँ जी। अरे बसुमती काकी, आप?
4: नारायणी,
2: कहिए कैसे आना हुआ?
4: अरे यहीं से वापस लौटाना चाहती है क्या?
2: माफ करना काकी, अंदर आइए ना।
3: अरे राम राम काकी।
4: जीते रहो बेटा, जीते रहो।
3: काकी सब ठीक ठाक तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं बेटा, कल युग है कल युग। ये कंपनी का मैनेजर, अरे ये तो कल युग का रावण है, है? हम गरीब मजदूरन को मजदूरी से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है।
2: काकी ये क्या कह रही हो?
4: तुम्हारी कसम नारायणी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
3: लेकिन काकी, मजदूरों को अब कहाँ भेजा जा रहा है?
4: साई नदी पर शिबू। अरे यहाँ से 50 मजदूरों को साई नदी पर भेजा जा रहा है।
2: मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों का दाना पानी उठ गया है?
4: अरे कुछ न कह नारायणी, सामान वामान बांध ले, संध्या तक यहाँ से निकल पड़ना होगा।
2: ठीक है, ठीक है काकी।
4: हाँ, जल्दी कर।
3: ठीक। नारायणी, अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया?
4: अरे क्या हुआ
3: नारायणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
4: अरे हट तो जरा शिबू, हमें देखने तो दे।
3: हाँ काकी, देखो ना, तुम्हें देखो मेरी नारायणी को क्या हो गया है, देखो तो।
4: अरे देखने तो दे।
3: हाँ देखो देखो।
4: अरे अरे लड्डू खिलाओ शिबू, लड्डू खिलाओ। अरे बाप बनने वाला है तू?
3: अरे सच काकी? अरे मैं बाप? अरे सच काकी?

0: क्यों भैया? अरे कैसे चहलकदमी कर रहा है?
1: पर तू कौन है भाई?
0: अरे भाई मैं लिचू हूँ, यहीं पर सफाई कर्मचारी हूँ।
1: ठीक है, तो मुझसे क्या काम है?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: तो भैया फिर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
0: अरे बर्बाद नहीं कर रहा भैया, मैं तो समय पास कर रहा हूँ।
1: समय पास क्या मतलब?
0: मतलब साफ है भैया, अरे तू भी अकेला घूम रहा है, मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। अरे भैया क्यों ना थोड़ी देर यही सही किनारे बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, तो समय भी आराम से कट जाएगा।
1: अरे लगता तो तू दिलचस्प है, तेरे साथ दोस्ती अच्छी निभेगी।
0: ये हुई ना बात, आओ बैठते बैठते
1: चल।
0: तूने भाई मेरा नाम तो जान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम है शिबू धासला।
0: ओहो शिबू धासला, अरे अच्छा नाम है शिबू, बुरा ना माने तो एक बात पूछो शिबू।
1: हाँ हाँ पूछना, अरे दोस्त की बात का बुरा नहीं माना जाता लिचू। जो कहना है मुझे अपना समझ कर कह।
0: अच्छा अच्छा एक बात बता शिबू, तू इतना परेशान क्यों है? अरे मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। हाँ
1: लिचू भैया, अब क्या बताऊं, साई की साइट पर आए हुए 7 महीने हो गए, मगर देखो ना अभी तक कोई काम ही नहीं मिला।
0: अरे शिवू भैया, हम लोग तो भगवान भरोसे हैं, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
1: अरे लिचू भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो। लिचू भैया तुमसे दिल खोलकर बात करने की इच्छा हो रही है।
0: अरे तो कर ना शिवू कर, दिल की बात कहने से मन का बोझ उतर जाता है और इंसान स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करता है, कर शिवू।
1: वो क्या है देख लीजिए, हाँ? बात ये कि मेरी घरवाली नारायणी को तो काम पर रख लिया है,
0: हाँ?
1: मगर मुझे नहीं रखा।
0: अरे
1: अब देखना, घरवाली कमाए और मरद खाए, ये क्या मुझे शोभा देता है?
0: कहता तो तू ठीक है शिवू, लेकिन ये भी सच है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता शिवू। हाँ
1: लेकिन लिचू मुझे खाली नहीं बैठा जाता रे।
0: अरे
1: लिचू भैया,
0: हाँ? देख भाई वादा तो नहीं करता पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा।
1: अच्छा कोशिश करना।
0: शिबू शराब पीता है क्या?
1: नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता।
0: अरे तो तू आज पी ले, अरे दोस्ती के नाम पर।
1: अरे नहीं नहीं लीचू नहीं, देख मुझे माफ कर,
0: अरे
1: मुझे क्षमा कर लीचू।
0: शिबू शिबू,
1: अरे देख ना यार अगर कहीं नशे में बह गया तो
0: अरे
1: तो गजब हो जाएगा।
0: ए शिबू, हाँ? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, नहीं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
1: नहीं नहीं मैं देख अरे सोच ले, देख बाद में तू मुझे कुछ मत कहना।
0: ए शिबू शिबू चिंता मत कर, चल मेरे साथ
1: चल चल चल। कहां?
0: अरे खलासी लंगर पर, यहाँ पास में ही है, वहां की शराब की मस्ती का तो बस क्या कहना है, आजा।
1: अच्छा, हाँ। देख ले फिर सोच ले तू।
0: अरे चल शिवू चल चल आजा आजा
1: चल, ठीक है चल।
2: तुम्हारा इनाम यशवंत है?
3: हाँ मगर तुम कौन हो?
2: यूनियन में तुम ही दलितों के नए नेता के रूप में शामिल हुए हो।
3: हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
2: अभी समझ जाओगे। एक काम करो, लो बीड़ी पियो, साथ में ये माचिस भी दे रहा हूँ तुम्हें, ये बीड़ी भी जलाती है और आग भी लगाती है।
3: देखो मैं बीड़ी नहीं पीता।
2: सुना है, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो, रात को ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
3: मैं जा रहा हूँ, अजनबी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
2: ठहरो यशवंत, मैं भेटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ, सहायक माने एजेंट। अब तुम समझ सकते हो कि मुझसे बात करने पर तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं।
3: शास्त्री जी का बहुत नाम सुना है मैंने, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं मैं, लेकिन तुम मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो?
2: मुझे शास्त्री जी ने खुद तुम्हारे पास भेजा है।
3: किस लिए?
2: तुम्हें समझाने के लिए।
3: क्या मैं ना समझूं?
2: हो तो तुम समझता, लेकिन राजनीति की सारी बातें नहीं जानते, इसीलिए मुझे शास्त्री जी की ओर से तुम्हारे पास आना पड़ा।
3: लेकिन तुम या शास्त्री जी मुझसे क्या चाहते हो?
2: देखो, तुम शास्त्री जी की सलाह के बिना अपनी ओर से कोई कदम मत उठाना। जैसा शास्त्री जी कहे वैसा ही तुम करना, हमेशा फायदे में रहोगे।
3: फायदा? कैसा फायदा?
2: अरे क्या तुम नहीं जानते, यहाँ का ओवरसीयर से लेकर भद्दे मुंह वाला इंजीनियर सबको जानते हैं हम। इंजीनियर कंपनी से हर महीना 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है, और एसडीओ हर महीने 1500 रुपए लेकर संतुष्ट रहता है, और तो और वो ओवरसीयर हर महीने सिर्फ 50 रुपए लेकर ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना?
3: जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं आपका मतलब।
2: लोकल लीडर शास्त्री जी यही चाहते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए, सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए, और इसके लिए वे मजदूरों की हड़ताल पर विचार कर रहे हैं।
3: क्या हड़ताल?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025-26 की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली, छत्रसाल, बुंदेल, केसरी के जीवन पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति होगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाले सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे बहुत सी चर्चाएं करेंगे, साथ ही सुनवाएंगे गीत संगीत। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं भूखे को अन्न प्रत्येक को रोटी के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भारतीय संस्कृति की महानता का परिचायक ही नहीं है, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी व्यक्त करता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां संस्कृति का आधार केवल भौतिक प्रगति नहीं बल्कि

मानवीय संवेदनाएं हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तब उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में अन्नदान को महादान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तब किसी भी व्यक्ति का भूखा रहना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही भावना भूखे को अन्न, सभी को रोटी के विचार में निहित है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न को देवता के समान सम्मान दिया गया है। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए भोजन का सम्मान करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बहनों, हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है बल्कि ऐसा भोजन उपलब्ध होना है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, पोषण से भरपूर हो और सभी लोगों तक समान रूप से पहुँच सके। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी दुनिया के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आज भी लाखों बच्चे पर्याप्त भोजन और कुपोषण के अभाव में अपना शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाते। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन प्रतिदिन बर्बाद भी हो जाता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि भोजन का सही प्रबंधन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हमारे गाँव में पहले अतिथि, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार हजारों स्वयं सेवकों और संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की। यह भारतीय संस्कृति में निहित सेवा और करुणा की भावना का उदाहरण है। बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन की बर्बादी को रोकें। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि भोजन के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करेगा।

0: की तीन दिशाओं में सुरक्षा के कवच महासागर के विषय में। बहनों, यह तो आप सभी जानती ही हैं कि भारत एक महान समुद्री राष्ट्र है। हमारे देश की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और तीन दिशाओं से महासागर हमें घेरते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये महासागर केवल जलराशि नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र के प्राकृतिक कवच हैं। महासागर हमारी सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। हमारे मछुआरों की आजीविका, समुद्री जैव विविधता और पर्यटन उद्योग भी महासागरों पर निर्भर है। महासागर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए महासागर मानव जीवन के लिए अमूल्य है। लेकिन आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम समुद्रों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और समुद्र पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि राष्ट्र की तीन दिशाओं के ये कवच हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की सुरक्षा करते हैं। बहनों, पानी को सुरक्षित रखने के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता, जिसका विषय है रहिमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही है श्रीमती नम्रता पांडे।
1: पानी है अनमोल, इसका नहीं है कोई तौल। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, या यूं कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ताजे और स्वच्छ पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से जल बचाना जल संरक्षण है। यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है ताकि दुनिया भर के लोगों के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। स्वच्छ जल प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत मूल्यवान है और इसका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। बहनों, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि जल है तो जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद के लिए हमें ना तरसना पड़े, तो उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की तीव्र गति और बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश के आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकटों से जूझ रहे हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और इससे संबंधित बहुत सी समस्याओं को जानने के बावजूद हम अभी भी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हैं। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को बेतहाशा बहाया जाता है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्वता को समझ रहे हैं, लेकिन जहां बिना किसी परेशानी के जल मिल रहा है, वहां लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। प्रदूषित जल में आर्सेनिक, लोहा आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है। दुनिया भर में हर साल लगभग 3.4 मिलियन लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। विश्व में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व में करीब 1 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। पृथ्वी पर भयंकर सूखे जैसे जल संकट को टालने के लिए हम सबको जल को कम से कम और सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर हम चाहें तो अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा सैकड़ों गैलन पानी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हमें अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे हाथ धोते, मंजन करते समय पानी के नल को बंद रखना चाहिए। स्नान के दौरान पानी बचाने के लिए प्रवाह प्रतिबंधित शॉवर हेड्स लगाना। घरों में किसी भी तरह के पानी के लीकेज को तुरंत ठीक कराना चाहिए ताकि इससे होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके। शॉवर के स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। कार धोने के लिए पाइप के इस्तेमाल से काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसके स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी और फलों को खुले नल के नीचे धोने की बजाय पानी से भरे हुए बर्तन में धोना चाहिए। बहनों, घर में जो हम रोज पीने का पानी भरते हैं तो बर्तनों का बासा पानी यूं ही व्यर्थ में ना फेंकें। उस पानी को हम पेड़ पौधों में दें या उस पानी को दूसरे बर्तनों में भरकर नहाने धोने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जब हम बर्तन साफ करते हैं या कपड़े धोते हैं तो जो पानी बचता है उसे भी हम अपने दूसरे दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। हम आमतौर पर यह देखते हैं कि अधिकांश वर्षा जल बर्बाद हो जाता है, हालांकि यह सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इस वर्षा जल का उपयोग वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। घरों में छत से इस तरह से पाइपलाइन फिट करवाएं जिससे घर की छत से सीधे वर्षा जल पाइपलाइन द्वारा सोखते गड्ढे में जाए। सोखते गड्ढे से पानी सीधे धरती में जाकर भूमिगत हो जाता है, जिससे जल का स्तर बढ़ता है और हमें जल की प्राप्ति होती है। कुएं तालाब बनाकर भी बहते हुए पानी को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को कम होने के बजाय और अधिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सूखे के प्रभाव को भी कम करता है। किसान ड्रिप सिंचाई के रूप में जानी जाने वाली इस सिंचाई विधि का उपयोग करके जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तकनीक में पौधों को संकीर्ण ट्यूबों का उपयोग करके पानी पिलाया जाता है और यह पानी सीधा पौधों के आधार तक पहुँचाया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। हम बारिश की बूंदों को सहेजें और पानी बचाएं। तो क्यों ना पर्यावरण की खातिर वर्षा जल संचयन के संधारणीय पर्यावरण अनुकूल और जैविक तरीके अपनाएं, जैसे वर्षा उद्यान। इसमें गीली घास के साथ साथ देशी पौधों का उपयोग करके पानी के दूषित पदार्थों को हटाया जाता है। यह वर्षा जल को जमीन में और अधिक रिसने देता है, जिससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक और आसान और सरल तरीका है वर्षा तस्तरी बनाना। यह एक अनबाउंड रेन वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ऊपरी हिस्सा होता है जो उल्टे छतरी जैसा दिखता है, जिसमें एक फनल होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और इसे नीचे से जुड़े बैरल में स्टोर करता है। वर्षा बैरल स्थापित करना। रेन बैरल कुछ भी हो सकता है जो वर्षा जल भंडारण कंटेनर के रूप में काम करता है, जैसे खाली ड्रम। छत से पानी को इसमें स्थानांतरित करने के लिए यूनिट को एक पाइप से जोड़ना होगा। कंटेनर को मच्छरों और कीड़ों के प्रजनन स्थल बनने से रोकने के लिए बैरल की ओर जाने वाले डाउन स्पॉट्स के सिरों को स्क्रीन करते हुए इसे एक टाइट फिटिंग टॉप से ढकना सुनिश्चित करना है। वर्षा श्रृंखला बनाना। घर की साज सज्जा को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ रेन चेन मजेदार और फैशनेबल एक्सेसरीज है, जो एकत्रित पाइपों से वर्षा जल को स्टोरेज कंटेनर या नाली में स्थानांतरित करके अपवाह से बचने में मदद करती है। बहनों, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल को बचा सकते हैं। यह हर समुदाय के लिए बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में अविश्वसनीय समाधान प्रदान करता है जहां पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन भूजल की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कई तकनीक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के लिए भूजल के इस्तेमाल को मितव्ययता से करे तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। हर साल हमारी जल आपूर्ति कम होती जा रही है। हम कृत्रिम जल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोतों पर निर्भर रहना है। जनसंख्या वृद्धि और हमारी लगातार बढ़ती आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप पानी की असंतुलित आवश्यकता के कारण दुनिया भर में पानी की कमी महसूस की जाती है। इसने जल संरक्षण के बारे में पर्याप्त चिंताओं को जन्म दिया है। आज हमें जरूरत है संसाधन प्रबंधन की, दक्षता में सुधार की और ऊर्जा को संरक्षित और सुरक्षित रखने की। तूफानी पानी और अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण और गैर पारंपरिक जल स्रोतों को स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश की खोज की जानी चाहिए। साथ ही बेहतर जल भंडारण के अवसर भी तलाशने चाहिए। बहनों, हम सभी ने ये पंक्ति तो सुनी ही है कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जीवन का प्रारंभ लगभग 300 करोड़ साल पहले पानी से हुआ था। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से व्याप्त है। वजन के हिसाब से सजीवों के शरीर में 65-70% जल ही होता है। जल के बिना ना प्राणी जगत जीवित रह पाएगा और ना ही वनस्पति जगत। इस रंग बिरंगी दुनिया का अस्तित्व पानी पर ही टिका हुआ है, इसलिए अनायास ही यह कहना पड़ता है कि बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिन पानी के सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए, हर जतन से पानी रखिए। पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती, इसलिए बहनों पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है।
0: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था रहीमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती नम्रता पांडे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बहनों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के दूर दराज जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित थी। आदिवासी समाज ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संघर्ष के सबसे चमकदार नक्षत्र थे भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवम्बर 1875 को उलीहातू में हुआ था, जो आज झारखंड में स्थित है। उनका जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने अपने समाज की पीड़ा, शोषण और अन्याय को देखा। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का लगातार शोषण किया जा रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे और उन्हें अपने ही जंगलों से वंचित किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर शिक्षा और एकता के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने महान व्यक्तित्व और जन सेवा के कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें धरती आभा अर्थात धरती पिता कहा जाने लगा। बहनों, बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया उल गुलान अर्थात महान विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को चुनौती देना ही नहीं बल्कि आदिवासियों को उनकी भूमि संस्कृति और अधिकार वापस दिलाना भी था। बिरसा मुंडा ने नारा दिया अबुआ दिशुम अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज। यह नारा स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों के साहस ने सिद्ध कर दिया कि भारत का हर वर्ग स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बिरसा मुंडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन अभी प्रारंभिक अवस्था में था। बहनों, उनका संघर्ष केवल आदिवासी अधिकारों का संघर्ष नहीं था बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का भी हिस्सा था। उन्होंने भारतीयों को आत्मसम्मान स्वराज और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। दुर्भाग्यवश अंग्रेज सरकार ने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बहनों, उनका जीवन भले ही छोटा रहा लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बहनों, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तब हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने एकता साहस स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन हमें उनके महान योगदान और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। बहनों, भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नायक नहीं थे बल्कि पूरे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रेम संघर्ष और न्याय के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन है। बहनों, गर्मियों के मौसम में हम सभी का मन करता है कुछ हल्का फुल्का खाने का और शाम को बच्चे जब खेलने जा रहे होते हैं या सोकर उठते हैं तब भी उनका मन करता है कि कुछ उन्हें हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाए। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं झालपुरी और भेलपुरी। बहनों, झालपुरी उड़ीसा बिहार और कोलकाता की मशहूर है जबकि भेलपुरी मुंबई का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसमें मीठी और तीखी चटनियों का स्वाद होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम दो अलग बड़े बर्तन ले लेंगे जिनमें हमें यह सामग्री मिलानी है। बस कुछ चीज़ों को यदि हम अलग हटा दें तो दोनों में ही काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जैसे कि दोनों में ही मुरमुरे डलते हैं। प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब चीज़ें दोनों में डाली जाती हैं। नमकीन आप जिस भी तरह का डालना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो बड़े बर्तन ले लिए हैं जिनके अंदर हम 3-3 कप मुरमुरे डाल देंगे। एक बर्तन में हम बना रहे हैं झालपुरी और दूसरे में हम बना रहे हैं भेलपुरी। इसी के साथ दोनों में ही हम डाल देंगे मूंगफली भुनी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच काला नमक, ये सभी सामग्री हम दोनों भगोनियों में डालते जाएंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, एक एक नींबू का रस, सभी तरह के नमकीन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो आप डालना चाहें। झालपुरी में यहाँ पर जो चना जोर गरम में हम इस्तेमाल करते हैं वह नमकीन भी डाला जाता है तो यहाँ पर हमने वो भी आधा कटोरी डाला है। बारीक कटा हरा धनिया दोनों में डालेंगे। जिस बर्तन में बहनों आप झालपुरी का मिक्सचर बना रहे हैं उसमें आधा कटोरी उबले मटर, जो आप बटरा वाली मटर होती है इसको आप रात भर भिगो दे पानी में और सुबह आप हल्का सा नमक डालकर इसे बॉईल कर ले तो ये, और आधा कटोरी काले चने यहाँ पर हमने लिए हैं ये हम झालपुरी वाले भगोने में डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी झालपुरी वाले मिक्सचर में डालेंगे और 1-2 चम्मच आम के अचार का तेल भी हम इसमें डालेंगे जिसमें कि आप यदि उसका मसाला भी डालना चाहें तो डाल दें। साथ ही हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे झालपुड़ी में डालने के लिए, जिसमें हमने लिया है भुना जीरा, साबुत धनिया, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इस सभी को हम मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लेंगे और फिर इसे भी डाल देंगे। तैयार है आपकी

0: आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डेढ़ बज चुके हैं, वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महावीर सिंह भदौरिया के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए भजन और गजल। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र किशन का संगीत और गीत रवि का।
1: उल्टा न झटको जुल्फ से पा

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जाँच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जेम 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गईं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
4: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
5: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
6: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
7: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

0: बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में। मैं हूँ आपकी महक दीदी। भारत के विश्व के चमकते हुए भविष्य रेडियो सेट के पास बैठे मेरे छोटे छोटे मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आज की बाल सभा बहुत खास है क्योंकि आज हम और आप मिलकर दो बहुत बड़े राज खोलने वाले हैं। पहला राज कि हम खाना, सोना, खेलना, पढ़ाई सब कुछ एक साथ कैसे कर सकते हैं, और दूसरा कि हम पूरी धरती को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो अब सब कान लगाकर सुनिएगा क्योंकि हमारी ज्ञान और मस्ती की गाड़ी शुरू होने वाली है।
2: खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

भप भप भप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक।

लाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, पुल पग डंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पतलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पतलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

बच्चों एक किस्सा सुनाऊं। एक बार आप ही के जैसा एक छोटा सा बच्चा था। उसके सपने में भगवान जी आए और उन्होंने कहा, वत्स, मैं रोज तुम्हें 24 सोने के सिक्के दूंगा, मगर शर्त ये है कि रात तक उन्हें खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप एक एक सिक्का सोच समझकर अच्छी चीजों पर खर्च करोगे, है ना? ठीक ऐसा ही जादू रोज हमारे साथ होता है। ऊपर वाले ने हम सबको रोज 24 घंटे दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस खजाने को कैसे खर्च करते हैं। इसी को कहते हैं समय का सदुपयोग। याद रखो बच्चों, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। कई बार हम क्या कहते हैं, दीदी बस 5 मिनट और रील्स देख लूं, बस 5 मिनट और गेम खेल लूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जब मम्मी डांट लगाती हैं, या परीक्षा पास आती है, या होमवर्क नहीं हो पाता हमारा, तब हम घबराने लगते हैं कि हाय अब तो टाइम ही नहीं बचा, है ना? होता है ना आपके साथ भी ऐसा? समय का सदुपयोग करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खेलना ही बंद कर दें। ना भाई ना, मैं खुद 1 घंटे खेलने जाती हूँ, क्योंकि व्यायाम शरीर को मजबूत रखता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर चीज का एक सही वक्त होना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, रोज सुबह उठकर एक कागज पर लिखो कि आज आपको क्या क्या करना है, जैसे कि 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा दोस्तों के साथ बाहर खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट या छुपन छुपाई, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा समय अपने माता पिता, नाना नानी या दादा दादी के लिए भी निकालें, और छुट्टियों के दिनों में तो 1 घंटा कुछ नया सीखने के लिए निकाला ही जा सकता है, जैसे संगीत, तैराकी, पेंटिंग, क्या कुछ नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, पहले 1 दिन का टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। फिर एक बार समझ में आ जाए कि कैसे ये करना है, तो हफ्ते भर का या महीने भर का भी टाइम टेबल बनाया जा सकता है। जब आप समय को इस तरह बांट लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पास कार्टून देखने के लिए भी पर्याप्त समय बच गया है और पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ एक और मजेदार टिप बताती हूँ। रोज रात को ये लिखें कि आपने दिन भर में क्या क्या किया। ये डायरी आप खुद को शाबाशी देने के लिए बना सकते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए बना सकते हैं कि 1 दिन में आपने कितना कुछ हासिल कर लिया।

0: बच्चों, अगर हम समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने अंदर की कई सारी खूबियों को निखार सकते हैं, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ बच्चों की बाल प्रस्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है तन्वी बालस्कर। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है माँ। सबसे प्यारी मेरी माँ, जग से न्यारी मेरी माँ। मैं हंसती तो वो हंसती है, मैं रोती तो रोती माँ। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। बचपन की आँखों से देखो, माँ सबकी ही सुंदर होती। सबसे पहला पाठ पढ़ाती, अपने मुँह का कार खिलाती। जब भी मेरे कदम डगमगाते, झटपट से मुझे गले लगा ले। उसने अपनी नींदें छोड़ी, मेरे लिए हर कसम भी तोड़ी। मेरे हर ख्वाहिश के खातिर उसने एक एक पाई थी जोड़ी। बच्चों, माँ की मदद करो, माँ का आंचल सुख से भरो। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया तन्वी। बच्चों, अब हमारे साथ एक और प्यारा सा बच्चा है, देखिए आज हमें वो क्या सुनाने वाला है।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियान संकेत सरंगे। मैं हूँ पहली अ में।
0: प्रियान, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
2: एक छोटा बीज। एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, आँख बंद करके वो सोया रहता था। आँख बंद करके वो सोया रहता था। टुपुर टुपुर बारिश बीच पे गिरती थी। टुपुर टुपुर बारिश बीच पे गिरती थी। सरकते सरकते सरकते वो सरकता चला गया। सरकते सरकते सरकते वो सरकता।

0: वृक्ष में बदल गया।
1: आते जाते लोगों को वो छाव देने लगा, हाँ हाँ छाव देने लगा। धन्यवाद।
2: बहुत बढ़िया प्रियान। अब अनाया आपकी बारी।
3: नमस्ते, मेरा नाम अनाया चौरसिया है। मैं आज आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ।

0: कैसे। थैंक यू।
1: बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर आवाज है अनाया आपकी। देखा बच्चों, अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो आप अपने अंदर के कवि, गायक सबको जगा सकते हैं। चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, अपनी खिड़की से जरा बाहर झांकना। कोई पेड़ दिख रहा है? पौधे दिख रहे हैं? उन पर बैठे पक्षियों को देखो, बाहर चलने वाले जानवरों को देखो, छोटी छोटी चींटियों को देखो, कैसे लाइन बनाकर जाती हैं। देखा है कभी ध्यान से? हमारे माता पिता और दोस्तों के अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, और वो है हमारी प्रकृति। अच्छा, ये बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? वही ना जो बिना कुछ मांगे हमारी मदद करे और हमें खुशियाँ दे। तो ज़रा सोचो, पेड़ों से हमें मीठे फल मिलते हैं, ठंडी छांव मिलती है, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं, और सबसे ज़रूरी, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। नदी हमें पानी देती है, बदले में प्रकृति हमसे क्या मांगती है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन क्या हम सच्चे दोस्त होने का कर्तव्य निभाते हैं? जब हम प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, बिना किसी वजह पेड़ों की पत्तियों को, फूलों को तोड़ते हैं, तो हमारी दोस्त प्रकृति उदास हो जाती है। भले ही हम आगे बढ़कर अपने दोस्त के लिए कुछ ना करें, मगर उसे चोट भी तो नहीं पहुँचाएंगे, है ना? तो चलो, आज की बाल सभा में हम सब मिलकर प्रकृति के सच्चे दोस्त बने। इसके लिए आपको कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, बस छोटी छोटी आदतें बदलनी हैं। जैसे कि अपने जन्मदिन पर या किसी खास दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाएं और रोज उसे पानी दें। जब वो पौधा बड़ा होगा ना, तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी किसी छोटे भाई बहन के बड़े होने पर मिलती है। और एक छोटी सी आदत बताती हूँ, पानी की बचत। ब्रश करते समय नल बंद रखें, नहाते समय उतना ही पानी लें जितनी की जरूरत हो। पानी की हर एक बूंद कीमती होती है। और हाँ, गर्मी के दिनों में अपनी छत या बालकनी में एक छोटे से मिट्टी के प्याले में पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा सा दाना जरूर रखें। जब वो पंछी आकर पानी पिएंगे, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जो दुनिया के किसी वीडियो गेम में नहीं मिल सकती।

तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की बाल सभा में हमने दो बहुत बड़ी बातें सीखी। पहली, समय हमारा सबसे बड़ा धन है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। और दूसरी, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। मुझे पूरा यकीन है कि आज से आप सब अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने घर के आसपास प्रकृति को और सुंदर बनाएंगे। और हाँ, प्रियान, तन्वी और अनाया की तरह आप सब अपनी प्रतिभाओं को प्राथमिकता देंगे। बच्चों, आज की बाल सभा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, समय का आदर कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए। अपनी महक दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें

0: रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बावजूद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में से संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया गया। इसमें हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेलकेसरी के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति होगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:35 पर। पीएम मोदी के 12 वर्ष मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप शाम 6:30 सुन सकेंगे। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीनानाथ खोटे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में कलाकार विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 5 बज रहे हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार श्रोताओं। आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ जो है युवा दिलों की धड़कन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार।
1: तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अपर्णा।
0: और मैं हूँ काजल। और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ये वाणी में।
1: तो दोस्तों, आज है दिन रविवार का, यानी कि हम आपको ले चलेंगे एक सैर पर, जहाँ हम मिलेंगे हमारे युवा साथियों से, और जिस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है युवा तरंग।
0: तो साथियों, इसी के साथ जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ढेर सारे नए युवाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है। तो देखते हैं कि इस बार हम किन नए लोगों से मिलने वाले हैं।
1: मिलेंगे काजल, मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बारी है हमारे श्रोताओं से रोज के प्रश्न पूछने की। तो दोस्तों, आज भी हम आपके लिए दो प्रश्न ले आए हैं जिसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तो आज का पहला सवाल है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
0: इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल ये है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप इन सभी के उत्तर ढूंढ के रखिएगा और कार्यक्रम के अंत में हमारे साथ मिलाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आज हम किन लोगों से मिले हैं, पर उससे पहले सुन लीजिए आज का ये गीत।

0: आँखों से।
1: तो अपर्णा, हमारे आज के पहले साथी हमें मिल चुके हैं, तो चलो चलते हैं और उनसे बात करते हैं।
2: ओके, तो हाय, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम यश तिवारी।
2: ओके, तो यश, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
3: मैं इंदौर से ही हूँ।
2: अच्छा, और अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं?
3: मैं कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर हूँ।

0: आपके इंटीरियर डिजाइनर, इंटरेस्टिंग ना काजल?
1: बहुत इंटरेस्टिंग है।
0: तो यश, थोड़ा सा हमें आपके काम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि ये काम में आप एंटर कैसे हुए, आपको इंटरेस्ट कैसे जगा और आपने कैसे सोचा कि आपको इंटीरियर डिजाइनर ही बनना है?
2: एज सच कुछ मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ 11th क्लास से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। इस फील्ड में आर्ट से रिलेटेड फील्ड है तो मुझे काफी अच्छा लगा और उसके थ्रू मैं आगे बढ़ा एंड आफ्टर 12th मैंने इस कोर्स में आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस किया।
0: ओके, तो आफ्टर 12th आपने ये चीज ज्वाइन करी, वेरी नाइस। तो अभी फिलहाल आपका काम कैसा क्या रहता है, मतलब आप क्या क्या डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमारे यंगस्टर्स को?
2: मैं एक इंदौर की बड़ी कंपनी में सीनियर डिजाइनर हूँ और यहाँ पर मेरे साथ काफी क्लाइंट्स मेरे हैं जिनके साथ मैं उनके प्रोजेक्ट्स पर पूरा डिटेल में वर्किंग करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट को डिजाइन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और जितना स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वगैरह से लेकर इंटीरियर ड्राइंग पर मैं काम करता हूँ, साथ में मेरी टीम उन पर काम करती है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने ये कहा कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट आया था, तो उसके बारे में हम और जानना चाहेंगे आपसे कि आप डिजाइनिंग के अलावा और कुछ करते हैं क्या आर्ट से रिलेटेड?
2: नहीं, डिजाइनिंग जरूरी नहीं कि जो आप आर्ट सोचते हैं समझते हैं वही डिजाइन होता है, राइट? अगर आप आर्ट को इतना ज्यादा सोचते नहीं है समझते नहीं है तो भी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फ्रीलांसिंग मेरे काम करूं, साथ में और किसी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट लेवल पर काम करूं, उस रीजन से भी इस फील्ड में मैं आया था। मैं फ्री रहना चाहता था, मैं अपने माइंड को फ्री रखना चाहता था और मैं किसी भी चीज को कितना अच्छी तरीके से बना सकता हूँ उस पर मेरा ज्यादा फोकस होता था। आर्ट का इस फील्ड से उतना रिलेशन नहीं है, बट हाँ है, कुछ रिलेशन है बट उतना ज्यादा नहीं है। सो उस बेसिस पर मैंने इस फील्ड में एंटर किया था।
1: ठीक है, तो इसके अलावा कुछ हॉबीज हैं आपकी?
2: हॉबीज मेरी है, मैं लिखता हूँ और पहले लिखता था, अभी तो बंद कर दिया है और अभी बस मैं फील्ड में ही हूँ, फील्ड में ज्यादा एक्टिव हूँ तो टाइम उतना मिल नहीं पाता है।
1: तो यश, इसी के साथ हम आपसे और ढेर सारी बातें जानना चाहेंगे और सबसे पहला तो ये कि इंदौर में आप हो, हमेशा से आप इंदौर से ही हो, तो इंदौर की सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज क्या लगती है आपको?
2: बुरी चीज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं ऐसा कुछ इंदौर में गलत। और अच्छी चीज इंदौर में क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत अच्छा है कि लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो उस बिहाफ में मैं इंदौर को बहुत सेफ और अच्छा समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है इंदौर में। इंदौर में अपने आस पड़ोसी जो भी हैं, नेबर्स हैं, वो अपने को अपना बना के रखते हैं। दूसरे शहरों में इतना अच्छा नहीं है ये माहौल, बट इंदौर में ये बहुत इजीली चीजें होती है तो इसलिए इंदौर काफी अच्छा लगता है मुझे।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, इंदौर में अपनापन बहुत ज्यादा है। और कभी आपने सोचा है कि आप इस शहर से कहीं और किसी दूसरे शहर जाना चाहेंगे?
2: नहीं, दूसरे शहर ऐसे परमानेंट जाने का तो नहीं सोचा, बट मुझे घूमना पसंद है तो मैं राजस्थान ज्यादा घूमता हूँ। उदयपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा सेकंड होम है, बट वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। राजस्थान में और भी सिटीज है बट उदयपुर मेरा पर्सनल फेवरेट आता है, तो मैं वहाँ वैसे जाता भी रहता हूँ, साल में 3-4 बार होकर आ जाता हूँ। उदयपुर ज्यादा पसंद है मुझे।
1: क्या बात है, तो आप परमानेंटली नहीं जाना चाहेंगे पर उदयपुर बार बार जाना चाहेंगे। अब क्योंकि आपने दो शहर देख लिए हैं, इंदौर और उदयपुर, तो अब खाने पे आते हैं, तो इंदौर की सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है और उदयपुर की कौन सी है?
2: इंदौर में फेवरेट डिश ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेरा कुछ नहीं है, मुझे स्वीट डिश टेस्ट ज्यादा पसंद है। सो मैं आपको स्पेसिफिक शॉप का नाम बताऊंगा, शर्मा स्वीट्स जो है ये क्लॉथ मार्केट के सामने, मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं आए दिन वहाँ जाता रहता हूँ। और मिठाई की बात है तो भवरीलाल भी मुझे बहुत पसंद है और बाकी जो भी फिर तीखा टेस्ट जो भी होता है उसमें मुझे कुछ भी चलता है, मेरा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हूँ खाने के साथ, मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, मैं सब खा लेता हूँ।
1: और उदयपुर का कुछ?
2: उदयपुर मुझे सिटी पसंद है, वहाँ की वाइब पसंद है, मुझे वहाँ बस बैठा दो, रोक दो, मुझे वहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ।
1: बस एक सवाल और वो ये है कि अभी तक आपने जो सबसे अच्छी चीज सीखी है लाइफ में वो क्या है?
2: लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज सीखी है बट ये मेरी मैंने बहुत ज्यादा जरूरी था मुझे सीखना पर मैं सीख नहीं पाया। अभी मैंने सीखा है कि गिव अप करना बहुत जरूरी है चीजों को, अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो चीजें बाद में परेशान करेगी, तो गिव अप करना बहुत जरूरी है। जो जैसा चल रहा है भगवान आपको आगे रास्ता दिखाते हैं, भगवान पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। मैंने हमेशा उस चीज को सीखा, अपने कर्म अच्छे करो, मैं उस पर फोकस करता हूँ और उसी पे मैं आगे बढ़ता हूँ।
1: बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि कई बार हम चीजों को लेकर बैठे रहते हैं और वो हमें तकलीफ दे रही होती है, पर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो काफी कुछ, दरअसल सब कुछ सही हो जाता है और शायद हमारे श्रोताओं को इससे हिम्मत मिलेगी और उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा कि वो पढ़ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल काजल। अच्छा यश, आपको गाने सुनना पसंद है, यानी आप रेडियो सुनते हैं या नहीं खासकर?
2: मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ।
0: ओके, तो किस तरह के गाने आपको ज्यादा सुनना पसंद है?
2: पुराने गाने बहुत ज्यादा सुनना पसंद है और उन्हीं में मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ।
0: अच्छा, तो आकाशवाणी तो आप जरूर सुनते होंगे, कभी ना कभी आपने सुना होगा?
2: हाँ, मैंने बहुत सुना है आकाशवाणी का शो।
0: ओके, तो अगर हम आपसे एक फरमाइश, आपके अगर पूछना चाहे कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे और हमारे

0: ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे तो आपकी फरमाइश क्या होगी?
1: मुझे एक पुराना गीत बहुत पसंद है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, वो गाना बहुत अच्छा है और वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं वो सुनना चाहूंगा और सबको सुनाना चाहूंगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब यश, आपने बहुत ही प्यारी फरमाइश की और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच यश। मैं आशा करती हूँ कि आपकी बातें हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी दिशा साबित होगी, नहीं काजल?
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: तो अपर्णा चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे नए साथियों से मिलते हैं। तो हमें हमारे सामने बैठी हुई एक प्यारी सी दोस्त दिख रही है, तो सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है?
4: अपराजिता जोशी, गार्गी जोशी।
3: अपराजिता एंड गार्गी, आप दोनों सिस्टर्स हो?
4: सिस्टर इन लॉ।
3: ओह माय गॉड, सिस्टर इन लॉ।
4: शी इज माय भाभी।
3: अरे वाह, ननद और भाभी की जोड़ी मिली है आज हमें, जो कि बहुत ही खूबसूरत
5: है। मिलती है इतनी प्यारी जोड़ियां जो आज हमें यहाँ पे मिली है, तो हमें आपसे बातचीत करने में बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेटली
3: बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम गार्गी से पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो?
4: मैं राजस्थान से हूँ।
3: तो कैसा लग रहा है आपको ये दो शहरों के बीच का जो सफर रहा, ये कैसा रहा आपका?
4: मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इंदौर बहुत।
3: कितना वक्त हो आपकी शादी को?
4: मेरी नवंबर में हुई थी शादी।
3: अरे वाह, अभी अभी इनकी शादी हुई है। तो आप राजता, आप अपनी भाभी को खूब घुमा फिरा रहे हो?
4: हाँ, इसलिए हम इधर आए हैं।
3: आप क्या करते हो?
4: मैं डॉक्टर हूँ।
3: क्या बात है, आप डॉक्टर हो। तो डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर होना मतलब किसी की जिंदगी बचाना, तो इस बारे में आप क्या फील करते हो, अपने प्रोफेशन के बारे में क्या फील करते हो?
4: तो मेरा बचपन से ही सपना था कि लाइक मेरे को सोशल सर्विस या फिर कुछ सेवा के इसमें जाना है, तो आई लव माई प्रोफेशन।
3: गार्गी, आप क्या कर रहे हो?
4: आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD।
3: क्या बात है, PhD कौन सा सब्जेक्ट में?
4: लाइफ साइंस।
3: लाइफ साइंस, तो क्या गोल है आपका, क्या बनना चाह रहे हो?
4: मुझे टीचर बनना है।
3: क्या बात है।
5: तो अपराजिता और गार्गी, इसके अलावा आप लोग जो प्रोफेशन अभी परस्यू कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज रही है बचपन से, आपने क्या सीखा है कुछ आर्ट रिलेटेड या किसी और फील्ड में?
4: सो आई थिंक आई एम लाइक अ ऑलराउंडर, वी कुड डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग।
5: वाओ, बहुत ही प्यारा। तो डांस के बारे में आपने बात की, तो किस तरह का डांस करना आपको ज्यादा पसंद है?
4: सो आई हैव लर्न कथक फॉर 4 years, बट मेरे को अपनी पढ़ाई की वजह से बीच में छोड़ना पड़ गया था।
5: ओके, तो मुझे लगता है कि अभी भी, लेकिन आपको जब मौका मिलता होगा, आप डांस करना बहुत पसंद करती होंगी। और गार्गी, आप क्या कहेंगे आपकी हॉबीज के बारे में?
4: मेरी हॉबीज है कुकिंग एंड डांसिंग।
5: वाओ, कुकिंग। तो कुकिंग, आप मुझे बताइए कि कुकिंग आपकी अगर हॉबी रही है, तो राजस्थान के खाने में और इंदौर के खाने में आपको क्या फर्क दिखा, या कहाँ का आपको बेहतर लगा?
4: कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बेसिकली। राजस्थान में भी तीखा खाना पसंद करते हैं लोग, इंदौर में भी तीखा और वैरायटी है, अभी वैरायटी ज्यादा है इंदौर में। कंपेयर नहीं कर सकती, मेरा टेस्ट है राजस्थान का, तो मुझे राजस्थानी पसंद है खाना।
5: बिल्कुल, वो तो आप बचपन से राजस्थान में रहे हैं, तो आपको वहाँ का ज्यादा बेहतर लगेगा। और अपराजिता, तो आपके फ्यूचर प्लान्स हम जानना चाहेंगे कि आगे, आप डॉक्टर तो अभी आप है, आप सेवा कर ही रही हैं लोगों की, आगे आप इस फील्ड में क्या फ्यूचर देखती हैं?
4: सो मैं साइकेट्री परस्यू कर रही हूँ बेसिकली, तो मेरा सबसे मेन मोटिव यही है कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। अगर मेंटली फिट रहोगे तो यू वोंट गेट एनी फिजिकल

0: सिम्टम्स, तो यस यही फीचर गोल है मेरा।
1: वाह बहुत अच्छा, और इस एक माइंडसेट के साथ लाइफ बहुत इजी हो जाती है मुझे यहाँ तक यही लगता है, और आप बहुत अच्छा काम कर रही है। और साथ ही हम पूछना चाहेंगे कि म्यूजिक में आप लोग कितने इंटरेस्टेड रहते हैं?
0: म्यूजिक मेरे मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ।
1: और गार्गी आप?
2: बहुत ज्यादा, मैं गाना सुनने बिना कुछ नहीं कर सकती, नहा नहीं सकती, खा नहीं सकती, खाना बना नहीं सकती।
1: तो हम इसी बात के साथ आपसे एक फरमाइश आपकी पूछना चाहते हैं कि आज आप हमारी ऑडियंस को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: एक पुराना गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आंचल।
1: वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, हमें बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बात करके। तो इसी बात पर हम आपके लिए पेश कर देते हैं।

0: चलो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे नए साथियों से। तो सबसे पहले इनके नाम जानते हैं। हेलो, आपके नाम क्या है?
1: जुबैर मंसूरी।
2: अमन खान।
0: क्या बात है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई?
1: दोस्त से दोस्त मिले हैं, फ्रेंड से फ्रेंड,
2: फ्रेंड से फ्रेंड,
0: दोस्त के दोस्त। अरे वाह, तो आपका जो बीच का दोस्त था वो क्यों नहीं है यहाँ पे आज?
2: वो थोड़ा बाहर है इसलिए।
0: अच्छा ठीक है, फिर बाहर है तो फिर अलग बात है, वरना आप उनको बिना बताए आप दोनों अकेले मिल रही है तो अच्छी बात नहीं है।
2: हम रूम पार्टनर्स हैं।
0: अच्छा, आप रूम पार्टनर्स हैं, क्या बात है। दोस्त के साथ साथ रूममेट्स भी हैं। तो जब हम रूममेट्स होते हैं तो हमें एक दूसरे की बहुत सारी बुरी बातें पता चलती हैं। तो आप दोनों एक दूसरे की कोई बुरी बात बताना चाहोगे?
1: नहीं नहीं यार।
0: एक बात
1: ये चुगलखोर बहुत है,
2: हरी आलसी है।
0: ठीक है, पर फिर भी दोनों साथ में अपनी दोस्ती मेंटेन करें, ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की कोई अच्छी बात हम जानना चाहेंगे तो वो क्या होगी?
1: हाँ, बाकी बॉन्ड अच्छी है हमारी, और
2: बॉन्ड अच्छा है और दिल का अच्छा है।
1: और क्या ही बताऊँ, ये भी अच्छी है।
0: ठीक है, तो हमने पहले ही मस्ती वाली बातें तो खूब सारी कर ली, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं?
1: मैं बिजनेस करता हूँ।
2: मैं नीट कर रहा हूँ।
0: बिजनेस और नीट के एस्पिरेंट, क्या बात है, ये तो बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है, पहली बार ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ये जोड़ी जो है, फिर ये कॉम्बिनेशन कैसे चल रहा है? यानी कि जो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप दिन भर अपने बिजनेस में बिजी हैं और आपको बहुत सारी बातें करनी होती होंगी, बहुत सारे फोन कॉल्स लगते होंगे, उसी के ऑपोजिट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत शांति और कॉन्सेंट्रेशन लगता होगा, तो ये कैसे चल पा रहा है?
2: बस चल रहा है, ऐसे ही बस मैनेज हो रहा है धीरे धीरे।
0: तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है?
2: प्रिपरेशन ठीक चल रही है अभी तो, नॉर्मल से।
0: और आप अपने बिजनेस अभी आपने शुरू किया है या चल चुका है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: हाँ, थोड़ा बहुत वेबसाइट पे बिजी रहता हूँ, देन उसके बाद फिर क्लाइंट वगैरह संभालता हूँ, कस्टमर वगैरह संभालता हूँ, एडवर्टाइजिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें रहती है मेरे ऊपर।
3: आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं और आपको ये इंटरेस्ट कैसे आया और आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको इसी चीज का बिजनेस करना है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो है पहले से ऑलरेडी बिजनेस मैन है, ये बिजनेस है डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में, और अभी मैंने फिलहाल में मेरा क्लोथिंग ब्रांड करंटली स्टार्ट किया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है और अभी फिलहाल में 2-3 सेल ही आई है, करंटली स्टार्ट ही किया है मैंने।
3: बट बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का यूथ जो है वो स्टार्टअप्स की जो हम बात करते हैं उसकी ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है, बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर। तो और आप बताइए कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से और इंदौर में आपको क्या डिफरेंसेस दिखे, या इंदौर में क्या अच्छा है या वहाँ क्या अच्छा है, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: इंदौर एक मार्केट है, वहाँ पे कोई मार्केट वार्केट नहीं है क्योंकि एक विलेज टाइप है वो, और यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे आपको मतलब ब्रांडिंग वगैरह जो भी है सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है इंदौर में ऑल टोटल।
3: अच्छा, और जैसे कि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल में से अगर आप कुछ टाइम निकालना चाहे खुद के लिए और कुछ अलग हटके कुछ करना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगे अपने दिन भर की भागदौड़ से बचने के लिए?
2: ट्रैवलिंग वगैरह।
3: ट्रैवलिंग आपको पसंद है, तो किस तरह की जगह जाना आप ज्यादा पसंद करते हैं?
2: माउंटेन्स टाइप।
3: और आप?
1: मैं भी ऐसी थोड़ी शांत जगह हो, जंगल हो एंड हरियाली वगैरह हो, जहाँ कोई नहीं हो।
3: अच्छा, आप साथ में कभी कहीं ट्रिप प्लान की है, कहीं घूमने गए हो साथ में?
2: डेली घूमते हम तो।
3: ये तो हो गई लोकल की बात, लेकिन कहीं बाहर के ट्रिप पे कहीं आप गए हो, कोई किस्सा अगर आपको ध्यान हो, कोई याद हो?
1: नहीं
3: नहीं गए, तो ये टाइम है क्या प्लान करें?
2: गए, मेरे गांव गए थे।
3: अच्छा,
1: हाँ बहुत प्यारी जगह है।
0: आपने गांव का नाम लिया है तो हमें उसका नाम भी बता दीजिए।
2: मनावर।
0: आप मनावर से और आप राजगढ़ से हैं, तो वहाँ पे क्या प्यारा लगा आपको?
1: वहाँ पे इसके गांव में मैंने देखा कि बहुत मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है और जंगल टाइप है पूरा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद, मुझे थोड़ा सुकून मिला।
0: आप दोनों के बारे में सब कुछ बहुत ही अलग है, मतलब वैसे तो दोस्त ट्रिप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, पर आप इनके गांव गए थे, ये बहुत ही प्यारी बात है। और मतलब किसी के घर जाना और फिर उनके बारे में और ज्यादा हमें जानने को मिलता है उसकी वजह से, तो ये बहुत प्यारी बात है। एक सवाल और कि वैसे तो हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं सबके पास, अगर किसी को एक घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, यानी किसी को 25वां घंटा मिलता है, तो अगर आपको मिलता है तो आप उसको कैसे यूज करना चाहेंगे?
2: सोना।
0: क्या बात है, सोना, असली सोना होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और
1: मैं कहीं अकेला जाना पसंद करूंगा, जहाँ पे पीसफुल है, अच्छी सुकून वाली जगह हो, वहाँ पे बैठना पसंद।
0: क्या बात है, और गोल्स क्या हैं आपके फ्यूचर? ऑफ कोर्स आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, पर फिर भी 10 साल में आप खुद को कैसे इमेजिन कर रहे हैं?
2: वैसे तो मेरे को मेडिकल फील्ड में, पर बिजनेस ज्यादा पसंद है मेरे को अभी, तो ऐसे बिजनेस मैन ही जाऊंगा मैं आगे।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी कि आप मेडिकल की पढ़ाई करके फिर बाद में बिजनेस में जाना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट। और आप?
1: हाँ, थोड़ी लग्जरियस लाइफ हो, देन पूर जो प्यूपल्स रहते हैं उनकी मदद कर पाऊँ।

0: और भी बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में वो करते
1: हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। और अब क्योंकि हम आकाशवाणी से हैं और आकाशवाणी में हम आपकी पसंद का गीत ना पूछे तो थोड़ा अधूरा लगता है, तो आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आज बजा सकते हैं आकाशवाणी पे?
2: कजरा रे।
1: क्या बात है, कजरा रे, बिल्कुल सुनवा देते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये।

0: श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और हम आशा करते हैं कि आपको खूब मजा आया होगा और हमारे इन युवा साथियों की बातें सुनकर आपने ढेर सारी बातें सीखी भी होंगी।
1: तो दोस्तों हाँ, लेकिन विदा लेने से पहले वक्त हो चला है आपको आज के प्रश्नों का उत्तर बताने का। तो पहला हमारा प्रश्न था, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसका उत्तर है मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने हमारी साइंस क्लास में पढ़ा ही था। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो दोस्त काजल
1: और मैं अपर्णा आपसे इजाजत चाहेंगे।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 5:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, जो गीत सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। आवाज़ें आप सुनेंगे अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और इस सफर में अब आपको आगे लिए चलते हैं और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ें। फिल्म का नाम है लावारिस, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों का एक अलग अंदाज। गीत है कल आज और कल फिल्म से। नीरज ने इस गीत को अपनी कलम से लिखा है और ये संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ
1: काम सीधा साधा है नीना, एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप
2: श्रोताओं, आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए सबसे अनमोल है, तभी तो हम चुनकर लाते हैं आपके लिए खूबसूरत गीत जिसे सुनकर आपके होठों पर मुस्कुराहट फैल जाए। दोस्तों, जीवन की राहें आसान भी होती हैं और कठिन भी, लेकिन जब साथ अपनों का हो तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। रिश्तों की यही मिठास और साथ निभाने का खूबसूरत संदेश लेकर आ रहा है ये सदाबहार गीत। आइए सुनते हैं सत्य पे सत्ता फिल्म का ये यादगार नगमा, जिसमें आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती और आर डी बर्मन की। ये खूबसूरत संगीत है आर डी बर्मन का और इस गीत को अपनी कलम से लिखा है गुलशन बावरा ने।

श्रोताओं, प्यार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां फूलों की खुशबू की तरह हमेशा महकती रहती हैं। ऐसी ही एक मासूम, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी को गीत का रूप दिया है इस गीत ने, जिसे हमने लिया है जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं इस गीत में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और मौसीकार हैं आनंद बख्शी, यानी गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। जब जीवन की भाग दौड़ हमें अपनों के साथ बिताए गए सुकून भरे पलों की याद दिलाती है, तब दिल अनायास ही उन सुनहरे दिनों को खोजने निकल जाता है। ऐसी ही मीठी यादों, फुर्सत के लम्हों और बीते हुए खूबसूरत समय की कसक को शब्दों में पिरोया है गुलजार साहब ने। आइए सुनते हैं मौसम फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, संगीत है मदन मोहन का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं उदित नारायण और आपको बता दें कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानम एल्बम के कुछ गीत। फैज़ अनवर ने इन गीतों को लिखा है और ये संगीत है निखिल विनय का।

और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, एल्बम का नाम है जानम, आपको हमने पहले भी बताया, और आवाज़ है उदित नारायण की। आज के हमारे सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार हैं उदित नारायण, और आप सुन रहे हैं फैज अनवर के लिखे हुए और निखिल विनय के संगीतबद्ध किए हुए गीत, और ये है कार्यक्रम का अंतिम।

0: इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आज के हमारे कलाकार थे मुकेश राठौर और इनके साथी।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह

0: अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम श्रोताओं 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत।

की गृहस्थी, इसमें सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा सड़क सुरक्षा, वार्ताकार होंगे श्री रजनीश मिश्रा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आप आनंद उठा सकते हैं लोकगीतों का, और साथ ही आपको मंडी के भाव की जानकारी भी दी जाएगी। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे से आप लुत्फ उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। 9:15 पर सुनेगा चित्र गीत, 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, 6:30 पर सुनिए चिंतन, 6:35 पर खेती की बातों में विषय होगा गुड़कारी है सोयाबीन के उत्पाद, आलेख डॉक्टर अनुराधा शर्मा का होगा, 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान का संगीत में पाठ, 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, 8:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा, सुबह 9 बजे सुनिएगा मराठी कार्यक्रम, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मियां मल्हार।

श्रोताओं, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। इसमें आप फोन कर सकते हैं और उद्घोषक से बातचीत करके आप अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। प्रोग्राम का नाम आप सब जानते हैं, MH हॉटलाइन। दिन में 11 बजे से हम भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करते हैं, जिनमें इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे सुनिएगा स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत। तो ये थे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आइए अब आपको शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दें। श्रोताओं, शाम की सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे, जिसमें सबसे पहले आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। कल के क्रम में सुनिएगा कुछ बातें कुछ गीत। 5:45 पर फिल्म संगीत। शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। 6:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे गुलाम अली। कल सोमवार है तो कल 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 7:20 पर आप सुन सकते हैं ग्राम लक्ष्मी। रात्रि 8 बजे सुनेगा उद्घोषक का अपना कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्र गीत। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। और श्रोता, अपने पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे कार्यक्रम मन भावन। 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत। कल रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग कोसी कानड़ा। तो ये था कार्यक्रम विवरण। हम आपको जानकारी दे रहे थे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। रात्रि के शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी है, जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत, सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों

0: विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित दो दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जाँच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
2: अलग अलग ढंग के कैंसर देखे, जो तथ्य है वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल रहा, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तंबाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है। कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं। बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
0: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि
3: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें, और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। और आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, ये सभी से मैं आह्वान करती हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं। साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीटवेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गया सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:21 और 6 सेकंड हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहना का प्रियंका की राम राम। भाई बहना, जरा भी अपन मांदा ताता हो जाए या कहीं अपना बीमारी हो जाए तो अपन झट से इलाज करवाएं और फिर कोशिश करें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की। ऐसा करें अपन अपना शरीर को कितो ध्यान रखा। असर हमारी मिट्टी भी है, अगर मिट्टी बीमार होगी तो उसको असर सीधो अपनी फसल पर पड़ेगा, फसल को उत्पादन कम हो जाएगा और फसल की सोना सी चमक जो रहे वह भी फीकी पड़ी जाएगी। तो अपना खेत का बचाना शुरू, स्वस्थ रखना शुरू, शासन ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करी है। भाई बहना, भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू करो गयो एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और क्षमता निर्माण अभियान है। यो अभियान 1 जून से 30 जून तक चलने वालों है, जिसको मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की सेहत का सुधारना, खेती की लागत का कम करना और साथ ही किसान भाई बहना की आय में वृद्धि करना। अब यो सब होएगो कैसे? तब भाई बहना, अपन यूरिया और डीएपी जैसा जो रासायनिक उर्वरक ना डाला उसको अंधाधुंध उपयोग करा, उससे अपनी जो मिट्टी परीक्षण बिना मिट्टी परीक्षण का आधार पर अपन संतुलित मात्रा में अगर खाद नहीं डालेंगा तो फिर अपनी मिट्टी तो फिर बेकार होएगी सही। उका सरु जरूरी है कि अपन मिट्टी परीक्षण करवाइन उका आधार पर ही खाद डाला। भाई बहना, इन अभियान का तहत हमारा जो कृषि वैज्ञानिक ना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान का और कृषि विज्ञान केंद्र का विशेषज्ञ ना गांव गांव जैन अपना किसान भाई बहना से सीधी बात करेगा और उनका जो भी आवश्यक सलाह है वह सलाह भी देगा। भाई बहना, अब यो बखत जो असो है जहाँ की जग असली और नकली की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि कई बार असो हो कि अपन नकली खाद बीज और कीटनाशक ना की पहचान नहीं होना से किसान भाई बहना का बहुत ज़्यादा नुकसान उठानो पड़ा। तो इका सर उनका जागरूक करनो भी इन्हीं योजना को एक इन्हीं अभियान को एक उद्देश्य है। साथ जो सरकारी योजना ना है उनको लाभ लेनो, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर फसल बीमा जैसी योजना ना हो, इनकी जानकारी सीधा किसान भाई बहना तक पहुँचानो और साथ ऐसा जो किसान भाई बहना जिनका जानकारी की कमी है या फिर वे पात्र होने का बाद भी इन योजना को लाभ नहीं उठाई पा रहा है तो उनकी पहचान करें और उनका इन्ना इससे जोड़नो, उनका लाभ दिलानो, यो सब भी हमारा इन्हीं खेत बचाओ अभियान को उद्देश्य है। तो भाई बहना, यो अभियान एक तरह से धरती माँ की सुरक्षा और भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को एक जन आंदोलन है। तई को सार योज है कि अपनी मिट्टी की सेहत का अपना सुधारना है और खेती की लागत का घटानी है। इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी का बाद अब अपन सुना एक लोकगीत, सुना अपन यो लोकगीत जिका गायो है बेन उषा रायकवार और साथी नाना।

0: वाहन का साथ जाती वक्त अपनी सुरक्षा को ध्यान रखा कि नहीं, तो असहमत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है और हम सबका जीवन का लिए, तो इकावारा में भी हमारा एक जो महत्व स्टूडियो में उपस्थित था रजनीश मिश्रा जी, उनसे चर्चा करी बेन स्मिता दुबे ने, तो इकावारा में अपन विस्तार से जाना कि भाई सड़क सुरक्षा जो है वह क्यों जरूरी है, तो सुना उनकी यह बातचीत।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और हम जब ये चीज देखते को जब मिलती है, तब हम सड़क पे से जब निकलते हैं और जब वहां देखते हैं कि सभी आगे से आगे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है, उस समय पे हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि घर पर भी हमारा कोई इंतजार कर रहा होगा। तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो हमारे को सुरक्षित रख सकती है, और ये सब सुरक्षाएं क्या होती है, छोटी छोटी बातें क्या होती है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो है रजनीश मिश्रा जी, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, शक्ति पुंज सामाजिक संस्था इंदौर से है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे स्टूडियो में, रजनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद सरजीत, आपको, सभी लोगों को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: तो हमारे श्रोताओं को आज सबसे पहले तो ये बताइए कि सड़क सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है।
2: सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक समाज का एक बहुत बड़ी समस्या सड़क सुरक्षा की वजह से आती है, क्योंकि सड़क पर जो हो रही दुर्घटनाएं हैं उनसे समाज पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। बहुत कई बार ऐसे देखने में आता है कि बिल्कुल किसी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति या बिल्कुल ही यंग लड़का, उसकी सड़क दुर्घटना की वजह से डेथ हो जाती है, और पूरे उस परिवार पर जिसमें दुर्घटना घटती है उस पर पूरे जीवन का एक अभिशाप सा हो जाता है। तो कुछ अंकों के माध्यम से मैं इसकी विकरालता का आपको नजारा पेश करूंगा।
1: जी हाँ।
2: कि ये देखेंगे कि जो आंकड़े कहते हैं, हाँ। हमारे देश में प्रतिवर्ष 180,000 व्यक्तियों की मौत सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होती है। अगर आप उसको प्रतिदिन में ट्रांसलेट करें तो ये आंकड़ा बनता है 500 लोगों की मौत पर डे हमारे देश में हो रही है सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना की वजह से। तो इसकी विकरालता का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है।
1: जी जी।
2: और इसलिए हमारे लिए, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मौतें होती हैं उसमें ज्यादातर 15 से लेके 45 वर्ष की उम्र के लोगों की मौतें होती हैं।
1: जी जी, हाँ।
2: जो कि देखा जाए तो समाज में उनका योगदान सबसे ज्यादा होना होता है या होने वाला होता है।
1: हाँ।
2: तो ऐसे इस सिचुएशन में आपके लिए मतलब एक अभिशाप से कम नहीं है सड़क पे होने वाली मौतें, क्योंकि आप हर बीमारी के लिए तैयार रहते हैं पर सड़क सुरक्षा, सड़क में जो दुर्घटना होती है उस दुर्घटना के लिए आप कभी तैयार नहीं होते।
1: जी,
2: आप कभी मानते ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, अचानक बिल्कुल सारा चीज परिवर्तित हो जाती है।
1: सही है।
2: इसीलिए हमारे लिए सड़क सुरक्षा आज समाज में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है।
1: अच्छा, तो अब चलिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, तो क्यों ना हम इसको और विस्तार से जानते हैं। सर, ये बताइए कि जैसे सड़क सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं,
2: हाँ,
1: उसमें सुधार किस तरह किया जा सकता है?
2: देखिए, सड़क सुरक्षा में हमारा जो सिद्धांत होता है, इसमें इसमें जो उपाय होते हैं, इसमें 4E का प्रिंसिपल होता है।
1: अच्छा।
2: 4E मतलब पहला ई जो होता है वो होता, हाँ, है इंजीनियरिंग।
1: इंजीनियरिंग
2: मतलब, इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि सड़क की जो डिजाइन हो रही है उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाना है।
1: अच्छा।
2: किन मतलब, कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क की डिजाइन की वजह से,
1: हाँ,
2: सड़क में डिजाइन में त्रुटियां हैं उस, हाँ, वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं।
1: अच्छा।
2: मान लीजिए कि कहीं पर आपका बहुत ही तीव्र एक मोड़ आया,
1: हाँ, हाँ,
2: उसमें दुर्घटना घटित होने की बहुत संभावना है। अगर आपने स्पीड का ख्याल नहीं रखा तो दुर्घटना होगी ही होगी। तो इन चीजों में अगर मान लीजिए कहीं पर आपका तीव्र मोड़ आ रहा है तो उसमें,
1: हाँ,
2: ये जरूरी है कि उस हेतु आपको संकेतक लगाए जाएं, साइन बोर्ड लगाए जाएं, और आपको किसी तरीके से स्पीड कैसे कम की जा सकता है उसका उपाय किया जाए।
1: जी।
2: तो ये सारे उपाय और डिजाइन इंजीनियरिंग में आते हैं, जो पहला ई हुआ। दूसरा ई हुआ हमारा एजुकेशन। आपने डिजाइन करी, आपने संकेतक लगाए, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि उस संकेतक का मतलब क्या है।
1: हाँ, ये होता है।
2: इसलिए संकेतक के बारे में एजुकेशन देना, जागरूकता फैलाना एक बहुत बड़ा एक जिम्मा है, जिसका आपको, अगर आप वो कर पाते हैं तो बहुत ही एक बढ़िया अचीवमेंट हो जाएगा।
1: हाँ,
2: और
1: हाँ।
2: ये हमारा दूसरा ई हो गया।
1: जी।
2: तीसरा ई हुआ हमारा एनफोर्समेंट।
1: अच्छा।
2: एनफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे पुलिस के पास

0: नियम कानून है
1: हाँ
0: और लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं, आपने जैसे मान लीजिए कि ओवर स्पीडिंग करते हैं बहुत लोग, तो
1: हाँ
0: ओवर स्पीडिंग अगर देखेंगे तो जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं देश में, लगभग 70% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही हैं।
1: सही है।
0: अगर उसमें आप देखेंगे, हमने डिजाइन करी रोड, हमने बताया कि भाई इस रोड पर आपकी स्पीड लिमिट 60 की होनी है या 70 की
1: जी
0: होनी है,
1: जी
0: देखेंगे आप व्हीकल वहां 100 पे चल रहे हैं, 120 पे चल रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारी बनती है पुलिस और प्रशासन की कि
1: हाँ
0: इस तरह की
1: हाँ
0: चीजों पर रोक लगाए।
1: जी
0: इसके लिए कई बार आप देखेंगे कई सड़कों पर कैमरा लगे होते हैं या स्पीड गन लगी होती हैं,
1: जी
0: तो ये एक एनफोर्समेंट का तरीका हुआ कि आपने जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं स्पीड के, उसको एनफोर्स करने के लिए उपाय अपनाए,
1: जी
0: तो ये एनफोर्समेंट हो गया। मान लीजिए कि आपको दूसरी दूसरी दुर्घटनाओं कारण होता है, लोग शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाते हैं,
1: हाँ
0: तो उसके लिए भी एक नियम है कि एक लेवल के बियॉन्ड अगर आपका ब्लड में अगर अल्कोहल है तो
1: जी
0: आप सजा के हकदार हैं।
1: हाँ
0: तो वो भी पुलिस, आप देखेंगे कई नाकों पर पुलिस की चेक पोस्ट लगे होते हैं, इस बात की जांच की जाती है कि अल्कोहल लेवल क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं ये एनफोर्समेंट में आते हैं।
1: अच्छा
0: फिर चौथा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स।
1: अच्छा हाँ
0: सड़क पर आप जा रहे हैं, दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद उस व्यक्ति को कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना कि गोल्डन पीरियड एक होता है कि उस
1: जी
0: गोल्डन पीरियड में आप अगर लेकर पहुंच गए मरीज को अस्पताल तो
1: हाँ
0: उसकी जान बचाई जा सकती है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम या कानून सुप्रीम कोर्ट से द्वारा लाया गया है, जिसको कहते हैं
1: हाँ
0: गुड समेरिटन लॉ।
1: अच्छा
0: कई बार क्या होता है कि हम आप जा रहे हैं सड़क पर, हमने देखी दुर्घटना हुई है, हम लोग सोचते हैं कि हम तो अपने काम से जा रहे हैं, कहाँ
1: हाँ
0: झंझट में पड़ेंगे। मान लीजिए हम लेके गए इनको अस्पताल, तो हमसे पूछताछ होगी, पुलिस वाले हमें तंग
1: बिल्कुल
0: करेंगे।
1: हाँ। बस ये एक चीज तो
0: जी
1: मतलब इतनी ज्यादा है, मैं तो क्या ही कहूँ। मतलब कितने परिचित या ये मान लीजिए कि अपने करीबी लोग ऐसे हैं जो इस चीज को देखकर, और कई बार इसको कहते हैं रहने दो, फालतू परेशानी में नहीं पड़ना है,
0: जी जी
1: वरना
0: जी
1: फिर वहाँ पुलिस थाने के चक्कर खाना
0: हाँ
1: पड़ेंगे, तो 10 बातें पूछी जाएगी। तो इस चीज का मुझे
0: तो
1: बताइए
0: इस
1: प्लीज।
0: चीज का ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, गुड समेरिटन लॉ बोलते हैं इसको।
1: जी
0: उसमें ये है कि अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल लेके पहुंचते हैं, आप बताते हैं
1: हाँ
0: कि ऐसी घटना घटित हुई और आप ये लेके आए हैं, तो आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। आपको
1: अच्छा
0: ना तो कोर्ट में जाना होगा, ना आपको पुलिस को दोबारा किसी प्रश्न चिन्ह का सामना करना पड़ेगा।
1: अच्छा
0: मतलब ये नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है।
1: मतलब ये नियम पता होना बहुत जरूरी है। क्या होता है,
0: हाँ
1: जागरूकता की कमी के तहत
0: हाँ
1: पता है नहीं,
0: ज्यादातर यही होता है कि आदमी
1: और
0: सोचता है कि हम तो फंस जाएंगे, हम कैसे वहां जाएं,
1: हाँ
0: कैसे क्या करें,
1: नहीं
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए
1: सही
0: ये
1: है।
0: बहुत महत्वपूर्ण एक नियम है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम
1: हाँ
0: किसी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो हमसे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है।
1: चलिए, आज का कार्यक्रम जो लोग सुन रहे होंगे उनको तो ये नियम पता चल गया होगा कि
0: जी
1: कभी दुर्घटना हुई है सड़क पर,
0: जी जी
1: तो उस व्यक्ति को अगर हम अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो
0: बिल्कुल
1: हमसे पुलिस या कोर्ट
0: जी।
1: कोई जरूरत नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और ना ही हमको कहीं जाना पड़ेगा।
0: उसके बाद एक और महत्वपूर्ण इसी सिलसिले में, चूंकि हमारी बात इसमें हो रही है कि कैसे जान
1: जी
0: बचाई जा सकती
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को, आम लोगों को किस तरीके से इमरजेंसी में टैकल करना है, किस
1: जी
0: तरीके से लोगों को हैंडल करना है।
1: हाँ
0: मान लीजिए
1: हाँ
0: कि एक CPR करके पद्धति होती है जिसमें
1: हाँ
0: आपको हार्ट को पंप करना होता है।
1: हाँ
0: कई बार ये होता है कि अगर आप वहां पर मरीज है, गिर गया है या उसको दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वो बिल्कुल मरने की स्थिति में है, अगर उसको CPR समय पर दे दिया गया
1: हाँ
0: तो बच सकता
1: तो
0: है।
1: भी बच सकता है।
0: उस अस्पताल जाए बिना ही अगर सड़क पर किसी व्यक्ति को CPR देना आता है और वो उसको
1: हाँ
0: CPR दे दे
1: हाँ
0: तो वो बच सकता है। इस तरीके के मेडिकल रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में भी जागरूकता लाना हमारे सड़क सुरक्षा का ही एक पार्ट है,
1: जी बिल्कुल
0: और अगर हम वो कर पाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर पाए, तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी, समाज के लिए बहुत हितकारी साबित हो सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सी बातें बता रहे हैं आप। तो चलो, ये तो हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। अब सरकार जो है उसका भी अपन ने इसमें ले लिया कि सरकार हमारी किस तरह से मदद कर सकती है इसमें। तो अब आखिरी मुझे ये बताइए कि भाई, एक सड़क सुरक्षा के लिए आम नागरिक जो होता है उसका क्या दायित्व रहेगा?
0: देखिए, आम नागरिक के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको दूसरे के राइट का सम्मान करना।
1: अच्छा
0: हमें सड़क
1: हाँ
0: पर यह नहीं मानना है कि सड़क हमारे लिए ही है, हमें पहले यह मानना है कि सड़क दूसरे के लिए है।
1: बराबर
0: अगर हम ये मान लेंगे तो आधी समस्याओं का अंत हो जाएगा।
1: हाँ सही रहे तो
0: ज्यादातर तो ये होता है कि सड़क पर हम निकलते हैं, हमको लगता है कि हम सबसे पहले निकल जाएं।

0: भी आप देखेंगे कहीं जाम की स्थिति हुई तो हर आदमी उल्टी दिशा से जाने की कोशिश करता
1: हाँ
0: है और
1: और
0: जाम को और भयावह स्थिति में पहुंचा देता है।
1: सही
0: तो
1: है।
0: सबसे पहला तो हमको दूसरे के राइट का सम्मान करना, यातायात के नियमों का सम्मान करना,
1: बिल्कुल
0: स्पीड, जो पोस्टेड स्पीड लिमिट है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कहा गया कि 40 की स्पीड होनी है, कहीं पर कहा गया 60 की स्पीड होनी है, तो जो स्पीड बताई गई है उसको किसी सोच समझ के, किसी तकनीकी कारणों से बताया गया है। तो तकनीकी कारणों से बताने पर आपको उसका ख्याल रखना है कि वो क्यों जरूरी है, और उसको बियॉन्ड जाने से आपको अगर 60 के ऊपर चले गए तो क्या खतरा है, आपको अनुभव होना चाहिए। अगर आप 60 पे लिखा है तो 60 पर ही चलें या 50 पर चलें, ये महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: इसी तरीके से आपको कहीं पर भी, आप जैसे मान लीजिए कि किसी चौराहे पर जा रहे हैं, आप
1: हाँ
0: मुख्य सड़क पर हैं और दूसरा व्यक्ति साइड वाली सड़क पर है, तो
1: जी
0: साइड वाली सड़क वाले व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि पहला राइट जो है वो मुख्य सड़क वाले का है,
1: बराबर है।
0: तो उसको रुक कर देखना है, ना कि वो एक्सपेक्ट करे कि वो मुख्य सड़क वाला उसके लिए रुकेगा। तो इन चीजों को अगर हम अपने जीवन शैली में ले आए तो ये हमारा जो दायित्व हम आम नागरिक के तौर पर कर सकते हैं, वो
1: हाँ
0: हम
1: हाँ
0: दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। इसके
1: जी
0: लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने घरों में अपने बच्चों को ये शिक्षा शुरू से ही देनी चाहिए कि बच्चे शुरू से ही इस बात को लेकर जागरूक रहें।
1: और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूलों में भी ये विषय कोर्स में ही डाल देना चाहिए
0: हाँ, कोर्स में डाल
1: कि
0: देना
1: बच्चों को
0: चाहिए।
1: मतलब सिर्फ एक नॉलेज यही नहीं रहे, उनको सिर्फ यही जानकारी नहीं रहे कि पीली बत्ती क्या कहती है, हरी क्या कहती
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: लाल क्या कहती है,
0: जो
1: इसकी
0: हमारे
1: जगह
0: दायित्व
1: ये
0: हैं,
1: दूसरी।
0: जो
1: हाँ
0: दायित्व हमारे हैं वो हमको डालना बहुत
1: जी
0: जरूरी है। स्कूल को आपने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया कि अगर हम
1: वही
0: कोर्स अपने क्यूरिकुलम का ही पार्ट बना दें,
1: हाँ
0: कि एक रोड
1: उसका
0: सेफ्टी
1: एक
0: का एक चैप्टर बन जाए या एक,
1: कम से कम 8वीं तक का बच्चा जो रहता है
0: हाँ
1: जब वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखता है
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: उसको अगर एक छोटा छोटा हर क्लास में दिया जाए
0: जी
1: नॉलेज
0: जी
1: इसका
0: तो
1: तो
0: ये
1: शायद।
0: हमारे लिए, अगर आम नागरिक के तौर पर देखिए तो हमारे लिए बहुत, हमारा दायित्व भी बहुत बड़ा है।
1: जी जी
0: इसमें
1: जी
0: अगर हम अपना अपना रोल भी निभा पाएं, अपना जो हम योगदान कर पाएं, तो हम समाज के लिए एक बहुत हितकारी काम करेंगे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि सड़क सुरक्षा हर आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर
1: जी
0: आदमी, ये इसमें समस्या विकराल जरूर है, पर इसके जो सोल्यूशन है वो उतने
1: बहुत
0: बहुत
1: सरल है।
0: सरल हैं, हर आदमी अपने लेवल पे उसके उपाय कर सकते हैं, कर
1: बिल्कुल
0: सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं चाहूंगा कि इस मैंने जो भी बातें बताई हैं उसका सभी लोग अपने जीवन में अमल करें और अमल में लाएं।
1: बिल्कुल
0: हेलमेट का उपयोग करें, सड़क पर निकलें, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें। इस
1: हाँ
0: तरह की चीजें छोटी छोटी हैं जिनसे आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है।
1: चालान बनने का रास्ता ना
0: हाँ, रास्ता ना
1: देखें
0: देखें,
1: कि
0: चालान बनने का
1: चालान
0: रास्ता
1: बनेगा
0: ना
1: तो ही
0: देखें।
1: हेलमेट
0: बिल्कुल
1: लगाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन चीजों को हम अपने आम जीवन में, दैनिक जीवन में अगर अमल करना चालू कर दें तो
1: हाँ
0: एक बहुत ही बढ़िया योगदान हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रजनीश जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, जरूर से इसको सुनकर लोग इसका लाभ उठाएंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: भाई बहना अभी अपन ने भेंट वार्ता सुनी जिकमा अपन ने जानियो कि सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है, जिकमा की सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ रजनीश मिश्रा से जानकारी ली रही थी बेन स्मिता दुबे। अब बातचीत तो अपन ने नरी सारी कर ली, मन करी रियो है कि कार्यक्रम में अपन एक लोकगीत और सुनी ला। तो सुना अपन भाई रतनदास बैरागी और साथीना को गायो यो लोकगीत।

भाई बिना गिरधर गोपाला को यो प्यारो सो लोकगीत अपन ने सुनियो जिक गायो थो भाई रतन दास बैरागी और साथी नाना। भाई बिना खेती बाड़ी में सिर्फ अनाज ही सोनो नहीं उगले, बल्कि अब तो हमारी फसल का बीच में मीठी क्रांति की लहर दौड़ी रही है। जी हाँ, हूँ बात करी रही है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की। कैसे एक छोटी सी मधुमक्खी तुम्हारी किस्मत बदली सकती है। बहुत सा किसान भाई बहना की सोच याज है कि मधुमक्खी पालन सिर्फ जो है शहद का लिए है, पर सच तो यो है कि अगर तुम भाई बहना अपना खेत का किनारा मधुमक्खी का जो बक्सा ना रखो तो वो तुम्हारी फसल जैसे कि सरसों हो या फिर सूरजमुखी उकी पैदावार पराक्रम की वजह से 20 से 30% तक बढ़ी जाए, यानी आम का आम और गुटलिन्ना का दाम। इना मिशन का तहत शासन जो है मधुमक्खी पालन का लिए सब्सिडी भी दे, जिकमें जैसे कि अपना कृषि विज्ञान केंद्र ना पर इको तुम्हारा जो प्रशिक्षण है वो भी मुफ्त में दियो जाए है। साथ साथ जो बक्सा खरीदना है अपना और अगर शहद निकालने की कोई मशीन की भी आवश्यकता है तो उका लिए भी तुम्हारा एक पर भारी छूट मिली जाए। तमिक्स जो है मधुमक्खी को मोम रॉयल जेली बेचिन अच्छी आय कमा सकता हो, जिकी बाजार में बहुत ही कीमत भी है। भाई बिरना इना मिशन को एक बड़ो हिस्सो है कि भाई शहद की शुद्धता की जांच को जो है लेप बनानो। अगर तुम भी इना मिशन से जुड़नो चाहो तो मधु क्रांति पोर्टल पर जैन अपनो पंजीकरण कर सकता हो। तो किसान भाई बिरना आज अपन ने जानो कि भाई मधुमक्खी पालन हमारी गृहस्थी में मिठास और संपन्नता ले सकते है, बस जरूरत है तो एक कदम बढ़ाने की। बात अपन और भी करांगा, पर कार्यक्रम में मन करी जो है कि अपन

ना सुनियो भाई, रतनदास बैरागी और साथी ना को गायो यो लोकगीत। और जैसा कि हमारा लोकगीत ना हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का दर्शाए, वैसे ही उनका माध्यम से हमारा नारा जो लोकगीत ऐसा भी है जिनमें कि हमारी खेती बाड़ी से जुड़ा हुई जानकारी है, उससे जागरूकता का लिए बनाया गया है और जिनसे लोकगीत का माध्यम से हमारा जागरूक भी करा है। और जो भाई बिरना जैविक खेती जो है वह सिर्फ खेती करने को तरीकों नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनका एक स्वस्थ भविष्य देने को वादो है। जब हम रसायन छोड़ी जैविक खाद और गोमूत्र अपनाएं तो न केवल हमारी लागत कम हो बल्कि हमारी थाली में शुद्ध और जहर मुक्त अन्न भी पहुँचे। तो भाई बिरना अपना यो ध्यान रखना है कि भाई अपना जैविक अपनाना है ना है और अपनी जो धरती माँ है उसका बचाना है, क्योंकि अपन शुरुआत से भी बात करी रहा है कि भाई अपनी जो धरती माँ की सेहत है उसको भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि वह धीरे धीरे हम रसायन को ज़्यादा उपयोग करी रहा है उससे वह बंजर भी हुई रही है। भाई बहना असर आज जो है 7 जून है और आज का दिन का अपन मनावा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का रूप में। किसान भाई बहना अन्नदाता है जो दुनिया को पेट भरा, पण भाई बिरना यो जो अन्न है तम उगई रहा हो वो कितो सुरक्षित है वह हम सबकी जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा को मतलब केवल पेट भरनो नहीं है भाई बिरना, बल्कि असो भोजन देनो है जो बीमारी ना से भी मुक्त हो, क्योंकि आज का टाइम में दूषित भोजन की वजह से हर दिन हजारों लोग बीमार पड़ रहा है। और इको इना साल को जो नारो भी है, इना दिवस को जो है बोझ से समाधान तक, हम अपनी खेती में कीटनाशक ना को जो उपयोग कर ही रहा है, अगर थोड़ा उसका संतुलित वसक अगर कोशिश करनी है कि हम जैविक तरीकों ही अपनावा, पर अगर ज़रूरत पड़ी भी रही है तो उसका अपन संतुलित तरीका से को उपयोग करा, ताकि जो फसल हमारा खेत से निकली रही है वह जहर नहीं बल्कि अमृत हो। तो भाई बिरना एक में अपना यो भी ध्यान रखना है कि जो कीटनाशक छिड़कने को समय है वो भी उको सही समय पर ही अपन उका छिड़का, जैसे कि फसल काटने से ठीक पहले कभी भी दवा नहीं छिड़कना चाहिए। और जब अपन अपना अनाज को भंडारण करा उना टाइम भी अपना ध्यान रखना है कि भाई अपना अनाज का नमी और कीड़ाना से बचाने का लिए अपन वैज्ञानिक तरीका ना को उपयोग करा। और जब अपनी फसल में अपन सिंचाई करा तो उना समय भी इन बात को ध्यान रखना है कि पानी जो है अपनो साफ हो, जैसे कि अपन अब बारिश को टाइम है तो अपना कुआ बावड़ी अपनो तालाब है भी अच्छा स्वच्छ पानी से भरे जाए। और साथ साथ अपना यो भी ध्यान रखना है कि भाई बीज और खाद जो भी अपन उपयोग में ली रहा है वह हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से ही लेना है, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और यो भी ध्यान रखना है कि कोई भी फसल जब अपन उगई रहा है तो किप पर निर्भर करे, जैसा कि जो अपन बीज लगावा तो हमेशा बीज भी अच्छी गुणवत्ता वालों हो और अपना बीजोपचार करने का बाद ही अपना उसको उपयोग करना है। और घर बार में जो भाई बिरना है वे भी ध्यान रख सकती है कि भाई जो अपन सब्जी भाजी उपयोग में ली रहा है वह अच्छी तरह से धोई नहीं पकाएं। तो याद रखो सुरक्षित भोजन और स्वस्थ परिवार इका साथज अब हमारी बात कहूँ न्याज दू विराम और सब किसान भाई बिरना का प्रियंका की राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में जो गीत हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं, उसे गाया है अरिजीत सिंह और अनुराधा भोला ने। इस गीत को लिखा है मिथुन ने और ये संगीत भी तैयार किया है मिथुन ने। फिल्म का नाम है सनम रे।

गदर 2 फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं. आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की. गीतकार सईद कादरी, संगीतकार मिथौन.

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया और अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ एक गीत। आवाजें विशाल दादलानी और श्वेता पंडित की हैं। फिल्म का नाम है लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चॉकलेट फिल्म का गीत सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार मयूर पुरी और संगीतकार थे प्रीतम। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हंसी तो फंसी फिल्म से एक गीत। आवाज़ें आप सुनेंगे चिन्मयी श्रीपदा और शेखर की। आपको सुनवा रहे हैं विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में ये गीत और लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां की ये दिलकश आवाज। इसमें आप सुनेंगे जयदीप साही का लिखा हुआ गीत और संगीत है सलीम सुलेमान का। फिल्म का नाम है आजा नचले।

श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र और केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अभी आप सुन रहे थे लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गीत। आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत प्रीतम का। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एआर रहमान का संगीत। इरशाद कामिल का गीत है, आवाजें सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की हैं, और फिल्म का नाम है रांझणा।

और अब बारी आ गई है कार्यक्रम के अंतिम गीत की। आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़, रकीब आलम का गीत और देवी श्री प्रसाद का संगीत। फिल्म का नाम है पुष्पा।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। दीजिए इजाजत और कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत

0: और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

0: नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केन्द्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के

0: खान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I'm VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
3: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including

अभी आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें, गीतकार मजरूह, संगीतकार ओपी नैयर। और अब आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, इस बार संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: इसी गीत के साथ चित्रगीत समाप्त होता है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया।

0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
3: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
2: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
4: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were...
5: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में

0: सिचुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
2: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
3: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
2: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
4: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था, और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे, और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे, क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
3: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
5: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
6: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे

0: जयकार बजो सत।
1: 2 मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
2: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
3: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
4: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हम दर्द की भी रही है।
5: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे की बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आयल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
5: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
4: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास याफ्ता रसूल को। याफ्ता रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
2: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
1: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
5: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे

0: मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जब भारत ने 326 रन बनाए थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
2: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
3: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
2: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
4: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the mridangam and on the ghatam by Vidwan Sri M Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक चार वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केन्द्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों के फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।